कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 जून महीने का सोमवार दिन और तारीख है 15। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैर अतर और तकनीकी अभियंता पीपी त्योरी। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

छह बज के 10 मिनट दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 पर सुनिए कालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी। 7:10 सुनिए अपने दैलिक न्यूज। सात बज के 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए ताइगन दैलिक न्यूज। 7:40 पेश है सदाबहार सूथिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स।

8 बजे समाचार प्रभात हिंदी में, राष्ट्र समाचार 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में। 8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर के खास खबरों के साथ।

0: शुरू होकर रेडियो अंडमान जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी जानागर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट

में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बातें। तो दोस्तों सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत पेश है। भक्ति गीत जिनके साथ आप महसूस करेंगे एक अलग ही सुकून। सुनिए और खुद को इस खूबसूरत माहौल में खो जाइए।

0: दोस्तों, ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर लुयो फोलगे लोरे गोला लोंगो नाने लोने आरो लोगालो मिंकिनागम मेजी दोन सी लुफरगद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ला फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन मुनि नाइस के फेलाइस देश एक्सपोजिशन लो भारत इनोवेट्स मेरो मको जिला रे तु फ्लैगशिप इवेंट जिम इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के आरा लोरीगेला जिगी इंडिया फ्रांस ओके कब कब देश लो के टॉप इनोवेशन स्टार्टअप ओके वेंचर कैपिटल फंड जम लकेन गोबे लाकुम दु एडवांस कंप्यूटिंग सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम टेक्नोलॉजीज स्पेस टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी ओके बायोटेक्नोलॉजी गादे जिगी इरिगोला आउम के सेक्टर्स लोक आने पीएम मोदी ओकेजन लो इंडिया फ्रांस के रेगो दुगो रेबाम दुबाम देखलो आगमे जाब जिला ऋतु माइनोरिटी एफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू मेनला इने नीरिगोला न्यूनी आरालो देश जगो माइनोरिटी कम्युनिटी गादिगे लाइफ क्वालिटी ओके सिचुएशन सकेगो इम्प्रूव काकु नेशनल डेली लो आगम ताका कोलो रिजिजू मुमेन के जिला पीएम मोदी के लीडरशिप लो सबका साथ सबका विकास विजन ए नारू सेक्शन ऑफ सोसाइटी लो डेवलपमेंट लो लाफ एम पाद वर्ग का एजितु सेवा प्रगति ओके जन कल्याण ग 12 इयर्स इंगा कुनम लो विकसित भारत संकल्प आउटरीच प्रोग्राम ग पार्टम रिगदुला डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोना मेन मु डेवलपमेंटल इनिशिएटिव ओके सोसाइटी ग लकेन नाम लगा 46 चौकम असेंबली कॉन्स्टेंसी लो सैटरडे ओगो आउटरीच तुरगो इंगो जिला रे तु एवं इंगो दागलो निर्मु मेन मु प्रेस्टिशियस उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार एम पाने सरतम नांगचम ने कारिक जिदुला मु ग ताइकामती कम्युनिटी ग अतरु ने कल्चरल हेरिटेज एम प्रिजर्व ला ओके प्रमोशन रानाम लो रिगुर कागुर जिरा नाम नम अच्छी रूबे कोई जितु ओके आदिन जेनरेशन लगावे इंडिजिनस ट्रेडिशन एम फोटेक दबेचिन जाबजिरी जितु

गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के सभी अजीज और प्यारे सुनने वालों को आपके इस दोस्त का, इस हमसफर का प्यार भरा प्रणाम और एक बेहद तारोताजा खूबसूरत सुबह मुबारक। अभी अभी हमारे स्टेशन पर आप सुन रहे थे कालो दैलिक में हमारा समाचार बुलेटिन, जिसमें आपने देश दुनिया और हमारे राज्य की खबरों को जाना। और जैसे ही समाचार समाप्त होता है, हमारी और आपकी मुलाकात का वो सुनहरा वक्त शुरू हो जाता है जिसका मुझे पूरे 24 घंटे इंतजार रहता है। जी हाँ, वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा मॉर्निंग शो का, जिसका नाम है सुबह सवेरे। आज सोमवार की सुबह है, मंडे मॉर्निंग, एक नया हफ्ता, एक नई शुरुआत, नए सपने और नई चुनौतियां। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप सभी का वीकेंड कैसा रहा। उम्मीद करती हूं कि आप सभी का वीकेंड बहुत ही बढ़िया, प्रोडक्टिव और सुकून भरा रहा होगा। खासकर जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दोस्त हैं,

उनकी तो क्या ही बात है, दो दिन का सुकून, ना फाइल की चिंता, ना बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डर। मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं आउटडोर ट्रिप प्लान की होगी, या तो गंगा लेक की तरफ निकल गए होंगे, या फिर घर पर ही कुछ अच्छा खाना बनाकर परिवार के साथ वक्त बिताया होगा। जिंदगी की इस बागडोर में ऐसी आउटिंग फैमिली के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। रिश्तों में ताजगी बनी रहती है, बट यहीं पर हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनके लिए दिलासा देने का मन करती हूं। जी हां, मैं बात कर रही हूं हमारे प्राइवेट सेक्टर की दोस्तों की। हमारे प्राइवेट एम्प्लॉयज, उनका दुख तो बस एक प्राइवेट एम्प्लॉयज ही समझ सकती है। आधी से ज्यादा कंपनीज में तो दो दिन का ऑफ होता ही नहीं, और अगर मिलता भी है तो वो होता है सिर्फ एक दिन, यानी संडे को। अब आप ही बताइए, उस एक संडे में इंसान क्या क्या करे? हफ्ते भर की गंदे कपड़े धोने हैं, घर का राशन लाना है, साफ सफाई करनी है, या फिर हफ्ते भर की नींद पूरी करनी है। संडे कब शुरू होता है और कब शाम की चाय के साथ खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, और ऊपर से मंडे मॉर्निंग का स्ट्रेस अलग। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपकी ये मेहनत ही देश और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है, इसीलिए उदास मत होइए। अरुण एफएम आपकी इस मेहनत को दिल से सलाम करती है। चलिए इस नए हफ्ते की और इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे गीत के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अरुण एफएम पर और आप सुन रहे हैं आपका अपना मॉर्निंग शो सुबह सवेरे आपकी इस दोस्त के साथ। दोस्तों, गाना सुनकर मन तो बेहद खुश हो गया होगा, पर चलिए अब थोड़ी बात करते हैं उस चीज की जो हमारे जीवन का सबसे मूल आधार है। आज हमारा पूरा ध्यान होगा हमारी हेल्थ पर, हमारी सेहत पर। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, पहला सुख निरोगी खाया, दूसरा सुख घर में माया। यानी दुनिया की सारी दौलत, सारी खुशियां एक तरफ और आपका एक स्वास्थ्य शरीर एक तरफ। अगर आपके पास दुनिया की सारी सहूलियतें हैं पर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो सब कुछ बेकार लगता है। इस नए हफ्ते में हमें खुद से एक वादा करना है कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे। अब जब मैं एक्सरसाइज कहती हूं तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि अरे यार, अब सुबह उठकर जिम जाना पड़ेगा, भारी वजन उठाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता। आप सुबह उठकर सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉक कीजिए। अगर आप थोड़ा तेज चलते हैं, जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, तो ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी दिल की बीमारियों के खतरे को बहुत कम कर देता है। और चलिए आज मैं आपको कुछ बहुत ही जरूरी और प्रैक्टिकल हेल्थ टिप्स देता हूं जिसे आप आज से ही अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। पहला टिप, सुबह का पानी। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए सबसे पहले कम से कम एक या दो गिलास गुनगुना पानी पीजिए। ये आपके बॉडी की टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और दिमाग को जगाता है। टिप्स नंबर दो, ब्रेकफास्ट किंग साइज। कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए। सुबह का नाश्ता एक राजा की तरह होना चाहिए, हैवी और न्यूट्रिशियस। इसमें आटे की रोटी, अंडे या स्प्राउट शामिल करें। अगर आप नाश्ता नहीं करते तो दिन भर आपके एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। टिप्स नंबर तीन, 2020 रूल फॉर आईज। जो लोग कंप्यूटर या मोबाइल पर बहुत काम करते हैं वो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। इससे आपकी आंखों का स्ट्रेस दूर होगा और चश्मा लगने का डर कम होगा। टिप्स नंबर चार, व्हाइट पॉइजन से दूर। अपने खाने में तीन व्हाइट पॉइजन यानी सफेद चीनी, सफेद नमक और मैदा का इस्तेमाल जितना हो सके कम कर दीजिए। ये तीनों ही चीजें धीरे धीरे धीरे शरीर को खोखला करती है। क्यों दोस्तों, है ना ये मजेदार और आसान टिप्स, इन्हें अपनाइए और असर देखिए। सेहत की ये बातें और ढेर सारी टिप्स आगे भी जारी रहेंगी, पर पहले सुनते हैं हमारे आज के प्लेलिस्ट का ये दूसरा बेहद खूबसूरत और सुकून भरा गाना। एंजॉय कीजिए।

और एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे। दोस्तों, अभी हमने बात की फिजिकल एक्सरसाइजेस और कुछ बेहतरीन हेल्थ टिप्स की, लेकिन हमारा शरीर तब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक हमारा मन शांत ना हो। और मन को शांत करने का, शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का जो सबसे बड़ा साधन है वो है हमारी मिट्टी की सौगात यानी योगा। योगा सिर्फ शरीर को मोड़ना या फ्लेक्सिबल बनाना नहीं है दोस्तों, योगा एक जीवन शैली है, एक ऐसी साइंस है जो आपकी माइंड, बॉडी और सोल को एक साथ कनेक्ट करती है। आज के इस दौर में हर तीसरा इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। काम का प्रेशर, घर की चिंताएं, इन सब का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इसका सबसे बेहतरीन और असरदार इलाज है प्राणायामा यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सुबह उठकर शांत माहौल में बैठिए और सिर्फ 10 मिनट प्राणायामा कीजिए। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है और गुस्सा या स्ट्रेस एकदम गायब हो जाता है। वैसे ही कपालभाति करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त होता है और फेस पर एक अलग ही ग्लो आता है। और अगर आप थोड़े एक्टिव हैं तो सूर्य नमस्कार को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं और ये अकेला आसान

आपके पूरे आसन आपके पूरे शरीर की मस्कुलर कंडीशनिंग कर देता है। इससे आपका स्टेमिना बढ़ता है, स्पाइन स्ट्रांग होती है और बॉडी का पोस्चर सुधारता है। यहाँ पर एक और बड़ा हेल्थ टिप्स नोट कर लीजिए, आप रात को सोने से कम एक घंटे पहले अपने मोबाइल फोन को खुद से दूर कर दीजिए। मोबाइल की ब्लू लाइट हमारे दिमाग को सोने नहीं देती, जिससे हमारी नींद गहरी होती है नहीं होती है। एक अच्छी और 7 से 8 घंटे की नींद ही सबसे बड़ी दवा है। याद रखिए दोस्तों, जो लोग रोज योगा करते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सीजनल बीमारियां उनके आसपास भी नहीं बदलती। इसीलिए कल का इंतजार मत कीजिए आज से ही, बल्कि अभी से ही अपने सेहत की तरफ एक छोटा कदम बढ़ाइए। चलिए, इसी ज्ञान और अच्छी बातों के सिलसिले के बीच वक्त हो चला है हमारे आज के तीसरे और आखिरी गाने का। इस प्यारे से गीत का लुफ्त उठाइए। मैं जल्द ही लौटूंगी आपके पास आज के शो का क्लोजिंग सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।

फूड को बाय बाय कहिए, खूब सारे पानी पीजिए और दिन भर में थोड़ी देर मुस्कुराइए जरूर। और हाँ, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर वाले दोस्त हैं, वो बिल्कुल उदास ना हो, आपकी मुस्कुराहट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। देखते ही देखते हफ्ता बीत जाएगा और अगला वीकेंड फिर से आ जाएगा। अब आपका ये दोस्त आपसे इजाजत लेती है, पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ईटानगर पर ढेर सारे दिलचस्प और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम्स आने बाकी है। अगले प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम, आपके नए सवेरे की आवाज आपके हर पल का साथी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ वंडरफुल हेल्दी एंड ब्लेस्ड वीकेंड अहेड।

दोस्तों, ये था कार्यक्रम सुबह सवेरा। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और अपने आप को थोड़ा और फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। इससे पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब सुनिए आपातानी दैनिक न्यूज अपनी भाषा में, अपने क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ आपके लिए। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बातें।

गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू, आपके हर सवेरे के साथी। अभी अभी आप हमारे स्टेशन पर सुन रहे थे आपातानी डायलेक्ट में हमारा समाचार बुलेटिन, जिसमें हमारे आपातानी दोस्तों ने राज्य और देश दुनिया की अहम खबरों को जाना। और जैसे ही समाचार का सिलसिला खत्म होता है, वक्त हो जाता है ज्ञान, मनोरंजन और ताजा तरीन जानकारियों से भरे हमारे सबसे चाहते प्रोग्राम। जी हां, शुरू हो चला है आपका अपना कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट। दोस्तों, आज तारीख है 15 जून, नए हफ्ते की पहली सुबह। बारिश हमारे पहाड़ों को धो रही है और मौसम में एक अलग ही ठंडक है। ऐसे खुशनुमा मौसम में दिमाग को थोड़ा और तेज करने के लिए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, दुनिया की इतिहास, क्योंकि जो बीत गया वो हमारे आने वाले कल की सीख देता है। आज 15 जून के दिन दुनिया के इतिहास में क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई थी, चलिए एक एक करके पूरी तफसील से जानते हैं। आज से सदियों पहले 15 जून 1215 को इंग्लैंड के किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा

समझौता पर साइन किए थे। दोस्तों, ये दुनिया का पहला ऐसी कानूनी डॉक्यूमेंट था जिसने राजा की ताकत को कम किया और आम लोगों के ह्यूमन राइट्स की बुनियाद रखी। आज हम जो डेमोक्रेसी और राइट्स एंजॉय करते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से हुई थी। मशहूर साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आज ही के दिन साल 1752 में एक बेहद खतरनाक लेकिन बेमिसाल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने तूफानी बारिशें में आकाश में एक पतंग उड़ाकर ये दुनिया को प्रूव किया था कि बादल में जो बिजली चमकती है वो असल में इलेक्ट्रिसिटी है। इस एक खोज ने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। चार्ल्स गुडियर ने आज ही के दिन वल्केनाइज्ड रबर का पैटेंट लिया था। अगर आज उन्होंने ये ना किया होता तो शायद आज हमारी गाड़ियों के टायर्स और बूट्स इतने मजबूत नहीं होते। हमारे मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की बुनियाद में उनका ये दिन बहुत बड़ा अहम किरदार निभाता है। साल 1997 में दुनिया के 8 सबसे बड़े डेवलपिंग मुस्लिम देशों ने मिलकर D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन की स्थापना इस्तांबुल में आज ही के दिन की थी, ताकि आपस में ट्रेड, बिजनेस और आर्थिक रिश्तों को बढ़ावा दिया जा सके और आपस में एक दूसरे की ताकत को मजबूत बनाया जाए। ग्लोबल हिस्ट्री के बारे में जानकर दिमाग काफी तेज हो गया होगा ना। चलिए अब रुक करते हैं सुरों की महफिल की तरफ, सुनते हैं हमारे प्लेलिस्ट का ये पहला बेहद खूबसूरत गाना, जिसके बाद हम लौटेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट यानी भारत के इतिहास के साथ। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अरुण एफएम पर और आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट आपके इस दोस्त के साथ। दुनिया का इतिहास तो हमने जान लिया, अब रुक करते हैं हमारे सेगमेंट नंबर दो भारत का इतिहास की तरफ। हमारे प्यारे भारत देश का इतिहास इतना बड़ा और गहरा है कि हर दिन के पन्नों में कोई ना कोई बड़ी कहानी छुपी होती है। तो चलिए जानते हैं 15 जून के दिन हमारे देश में क्या अहम इवेंट्स हुए थे।

आज ही के दिन यानी 15 जून 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने न्यू दिल्ली में भारत की विभाजन के प्रपोजल को स्वीकार किया था। यह हमारी तारीख का एक बेहद भावुक, मुश्किल और अहम मोड़ था, जिसके बाद हमारे देश का एक नया नक्शा तैयार हुआ। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय संगीतकार और सितार वादक पंडित शारदा सहाय का जन्म आज ही के दिन 1929 में हुआ था। उन्होंने बनारस घराने की बाज को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया। अगर हम भारत के सिनेमा जगत की बात करें तो आज का दिन बहुत बड़ा है। आज ही के दिन साल 2001 में आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान और सनी देओल की कदर एक प्रेम कथा दोनों एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इन दोनों ही फिल्मों ने कमाई और पॉपुलैरिटी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। भारत में ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट यानी कानून में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। आज ही के दिन साल 2005 में प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन को पारित किया गया था, जिसने देश की आम जनता को सरकार से सवाल पूछने का सबसे बड़ा अधिकार दिया। क्या बात है दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास सच में हमें हैरत में डाल देता है। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं आज का दूसरा गाना, फिर लौट कर आएंगे हमारे सबसे अहम और तीसरे सेगमेंट यानी आज के लोकल और स्टेट न्यूज के साथ। सुनते रहिए

और एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सबसे अहम और आखिरी सेगमेंट में, जो है सेगमेंट नंबर 3। आज तारीख है 15 जून, और चलिए रुक करते हैं द अरुणाचल टाइम्स की उन बड़ी और सरगर्म हेडलाइंस की तरफ जो आज के दिन हमारे लिए सबसे जरूरी है, हमारे राज्य की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी है। पीपीए यानी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने आफ्रा यानी अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को का कड़े शब्दों में विरोध किया है। पीपीए का साफ तौर पर कहना है कि इस एक्ट के जो नियम और शर्तें हैं वो हमारे इंडिजिनस ट्राइबल आइडेंटिटी, हमारे ट्रेडिशनल फ्रीडम और हमारे संस्कृति के ऊपर असर डाल सकती है, इसीलिए सरकार को इस कानून पर दोबारा विचार और चर्चा करनी चाहिए। हमारे श्रमिक भाइयों के लिए एक बड़ी और राहत बड़ी खबर है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स जारी किए हैं कि जितने भी एक्सेस वर्कर्स हैं उनके बचे हुए वेजेस को तुरंत रिलीज किया जाए। ये उन सभी फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अपने हक के पैसे के काफी समय से इंतजार कर रहे थे। सरकार के इस एक्शन से उनके घरों में राहत का माहौल होगा। हमारे पड़ोसी राज्य मणिपुर से एक बड़ा बयान आया है जहां के हालत पर पूरे नोटिस की नजर बनी हुई है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मणिपुर में तब तक शांति आना मुश्किल है जब तक उन सभी लोगों को डिसआर्म नहीं किया जाता जिनके पास इलीगल आर्म्स है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गैर कानूनी वेपन्स का समाज में होना हमेशा हिंसा को बढ़ावा देता है, इसलिए आर्ममेंट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि अमन और चैन दोबारा लौट सके। दो राज्यों के रिश्तों को मजबूत करने वाली एक बेहद पॉजिटिव खबर है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के एसीस यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स अथॉरिटीज ने एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू दोनों पहाड़ी राज्यों के बीच बिजनेस, ट्रेड, टूरिज्म और डेवलपमेंटल कोलैबोरेशन को एक नए लेवल पर ले जाएगा, जिससे दोनों राज्यों की जनता को बहुत फायदा होगा। और आखिरी खबर जो हम सभी के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, अरुणाचल प्रदेश को अब तक टोटल 20 जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है। जी हां, हमारे ट्रेडिशनल ट्राइबल हेरिटेज हैंडीक्राफ्ट्स और यूनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अब ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। इसका मतलब है कि हमारे लोकल आर्टिसंस और फार्मर्स के बनाए प्रोडक्ट्स अब दुनिया भर में हमारे नाम से पहचाने जाएंगे। खबरों का यह सिलसिला यही समाप्त होता है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सेगमेंट में मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम में आज बस इतना ही। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम।

म यो भारत इनोभेटिभ इभेन्टको नि पलाइस डाइस एक्सपोजिसनको नि म यो नाइसलु म कजी लाग्ला रिग नि खुबला मि पादुको सो ग प्लेग सिप इभेन्टसम इन्डिया फ्रान्स इयर अफ इनोभेसन ग अरालोक स्टार्टअप ओक वेन्चर क्यापिटल फन्ड लोक अरालोक इन्डिया ङला फ्रान्स ङ बनि मोकु अङ रिबाम दुखु मराब्लेन्ज खुनाम ग खेला बिपालिन दुखु यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज एपियर्स किरेन रिजिजु बिपा खुनाम ङ अङनि खुने अङ निङरिङला निङनि अरालो मोकुलो माइनॉरिटीज कम्युनिटी ग रिकुर्सन कर ङ अलयासन दुखुनेला बिपा दुखु नेशनल डेली यूनियन लैंड को ना इंटरव्यू का मारो और सुदुकुला रिजिजू ने मिवें पादे ना सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बिजुन गो मलिन गे लाखुला रिराफ कुनाम लखिंग बद डेवलपमेंट ग सोसाइटी के सेक्शन मलंगलो अलरों बरिलेंसिंग गदखुने ला मिपालें दुको अरुणाचल प्रदेश ग डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन मिफाकुनाम ग विकसित भारत संकल्प आउटरीच प्रोग्राम ग अरालो के अंगिकुने अनिंगला निंग अरालो सेवा प्रगति विकास ओके जन कल्याण nga alarong barilin sang lingga gado kuna la mipado ko so gama som deputy chief minister ni mikilo ga Saturday alulo 16 chokam 46 chokam ST assembly constituency nga angkar do kula mipalin do ko so ga tur angkar ko su deputy chief minister ni mi ustad bismillah kan yuva puraskar nga पाने सरतम नमचम नि कारक्सुला गामा रोड सुदुकुला मिपालें दुकु अरुणाचल प्रदेश के होम पीएचई वाटर सप्लाई मिनिस्टर मामा नातुंग मियो रामकृष्णा मिशन हॉस्पिटल लो तंगनाम इसी पाच फालें मानम दोंगरुक्लो काकर अंकरला काकर गन कुबला मिपादुकु सो दोंगरुक्लो मिनिस्टर निमि आरके मिशन अथॉरिटीज ngala पीएचसी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट गे ऑफिशियल्स द दंगा गामा गो रोरक बिरक्सुला रिगनि कुबला मिपालिन दुकु याचुली गे एमएलए तोको तातोंगला कैपान्योर मिशन प्लान गे सीईओ बिगन एम जे बनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को तुलक मिसगन को बेला मिफा दुकु सो गे एम ओ यू साइन कोलो एक लाबिया गे सीईओ मेल दीपक ला कैपान्यो डिस्ट्रिक्ट लो एजुकेशन सेक्टर ददसम अलरों ब रिलेंसिंग लिंग दकुब गामांग रोरिक बिर सुला दिगनि खुबला बिपा दुकु अपर सुबर्णसिरी डिस्ट्रिक्ट लो डिस्ट्रिक्ट लीगल अवेयरनेस ते दे तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने लेकिन गुब रिबाम दकुला वर्ल्ड इल्डर एब्यूज अवेयरनेस 2026 नाम प्रोग्राम गुनी बुइनाम पमलो अवेयरनेस ना रिगेगन कुबला मे पादुकु सो अलोलो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डीएलएस एन लाजीला डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस एडवोकेट निजाम बुई बोलो दोंबाम लाखुला गामांग रोरिक बिरसुला दिगनि खुबला बेपाद लेंदुकु मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर लोक बेपा खुनाम ग अरुणाचल प्रदेश ग रिंगुला अप्पी अक्कन डिस्ट्रिक्ट्स गुलो येलो
एलर्ट गो कातम ला यदो अचल ब होलक ते दुखुला मफा दुखु सो ग डिस्ट्रिक्ट दे दे लो मोको गुनलो दोगुम दोरिया अंग तकला निदो अचल ब होलक ते दुला मफा लें दुखु सुरु ग तागेन गाम यूनियन बिन तम संका हबो

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के सभी अजीज और प्यारे सुनने वालों को आपके इस आरजे का, इस हमसफर का प्यार भरा प्रणाम और एक बेहद तारोताजा खूबसूरत सुबह मुबारक। अभी अभी आप हमारे स्टेशन पर सुन रहे थे तागिन डायलेक्ट में हमारा समाचार बुलेटिन, जिसमें हमारे तागिन दोस्तों ने राज्य और देश दुनिया की अहम खबरों का जाना। और जैसे ही समाचार का सिलसिला खत्म होता है, वक्त हो जाता है सुरों के उस सिलसिले का जो कभी पुराना नहीं होता। जी हाँ, शुरू हो चला है आपका अगला कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों, सदाबहार का मतलब ही है वो नगमा, जो वो बातें जो हमेशा हमारे दिलों में जवान रहती है। आज सोमवार के इस हसीन सुबह में जब हमारे पहाड़ों पर धुंध और बारिश एक अलग ही नजारा पेश कर रही है, तब दिल करता है कि बस संगीत की दुनिया में खो जाएं। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और इस नए हफ्ते में दौड़भाग शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आज हमारी मिट्टी का, हमारे आसमान का मिजाज कैसा रहने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के मौसम यानी वेदर अपडेट्स की। अगर हमें मौसम का हाल पहले से पता हो तो हम अपने दिन भर के कामों को, अपनी ट्रैवलिंग्स को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए सीधे रुक करते हैं वेदर यानी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ और जानते हैं कि आज ईटानगर और हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश में बादल क्या कह रहे हैं।

मौसम की पूरी तफसील से बातें करेंगे, पर पहले इस नए हफ्ते की और इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे एवरग्रीन और सदाबहार गीत के साथ, जो आपके अंदर एक नया सुकून भर देगा। सुनते हैं ये पहला गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अरुण एफएम पर, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सदाबहार आपके इस दोस्त के साथ। दोस्तों, गाना सुनकर मन तो बेहद खुश हो गया होगा ना, पर चलिए अब रुक करते हैं हमारे मौसम के पहले हिस्से की तरफ और जान लेते हैं हमारी राजधानी यानी ईटानगर के मौसम का हाल। मौसम विभाग केंद्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज ईटानगर और उसके आसपास के इलाकों में आसमान पर पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, यानी जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा। बारिश की बात करें तो आज ईटानगर में हल्की से मध्यम बारिश यानी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की पूरी संभावना है। कुछ इलाकों में एक या दो बार तेज बारिश के झोंके भी आ सकते हैं, इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना छाता या रेनकोट साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर तापमान की बात करें तो आज ईटानगर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो करीब 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रात के समय गिरकर करीब 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम में नमी यानी ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी उमस महसूस हो सकती है, पर बारिश के बाद मौसम एकदम खुशनुमा हो जाएगा। चलिए, ईटानगर की हाल तो हमने जान लिया, पर हमारे पूरे अरुणाचल का मौसम कैसा रहेगा ये बताऊंगी मैं आपको इस छोटी से ब्रेक के बाद। सुनते हैं आज के प्लेलिस्ट के ये दूसरा बेहद खूबसूरत और सुकून भरा गाना।

और एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर 11 FM पर। आप सुन रहे हैं सदाबहार। दोस्तों, ईटानगर के बाद अब रुख करते हैं हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश के ओवरऑल मौसम के हाल की तरफ। हमारा राज्य इतना बड़ा है कि यहां कहीं घाटियां हैं तो कहीं बर्फीले पहाड़, इसलिए मौसम का मिजाज भी हर जिले में थोड़ा बदल जाता है। मौसम विभाग की वार्निंग और फोरकास्ट के मुताबिक पूरे अरुणाचल प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। आज राज्य की अधिकतम जिलों में वाइडस्प्रेड रेन यानी लगभग सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। खासकर जो हमारे फुट हिल्स और लो लाइंग एरियाज हैं, वहां पर बारिशें का सिलसिला रुक रुक कर पूरे दिन चलता रहेगा। मौसम विभाग ने एक अहम चीज पर जोर दिया है, जो हमारे ऊंचे पहाड़ी जिले हैं जैसे तवांग, वेस्ट कामेंग, अपर सुबनसिरी और अंजाव, वहां पर सुबह के समय और शाम को हैवी फॉग देखने को मिल सकता है। विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है, इसलिए जो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं जो गाड़ियां चला रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी बहुत ध्यान से और धीरे चलाइए। साथ ही लगातार बारिश के कारण कुछ सेंसिटिव एरियाज में हल्का लैंडस्लाइड होने का खतरा भी रहता है, तो यात्रा पर निकलने से पहले रास्तों की जानकारी जरूर ले लें। ओवरऑल तापमान पूरे राज्य में करीब 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच अलग अलग जिलों में फ्लक्चुएट करेगा, जिससे पहाड़ों पर ऊंची ठंडक बनी रहेगी। मौसम की बातें और जानकारी यही पूरी होती है।

तो दोस्तों, ये था सदाबहार। उम्मीद है इन सुरों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होगी। आकाशवाणी का ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्स है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
4: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
5: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी, प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
8: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।

0: किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान दैनिक भास्कर में है। केरल

0: दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली और हमारे नॉर्थ ईस्ट शिलोंग दोनों ही जगहों से समाचार का सिलसिला यहीं पर थमता है। लेकिन दोस्तों, बातों और जज्बातों का सफर तो अब शुरू होने जा रहा है। गीत संगीत और बदले हुए मौसम की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है आपके अपने सबसे खास और लाइव टॉक शो जिसका नाम है हेलो ईटानगर। आपके साथ जुड़ी है आपकी अपनी आरजे याजू और इस नए हफ्ते की पहली धूप के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों आज तारीख है 15 जून। अक्सर लोग सोमवार की सुबह को मंडे ब्लूज कहते हैं, यानी काम पर जाने का आलस। पर आज का दिन सिर्फ एक आम सोमवार नहीं है। आज जब सुबह सुबह मैंने कैलेंडर के पन्नों को पलटा तो मेरी नजर एक ऐसी तारीख पर गई जो हमें रुकने, सोचने और अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये सुनने में शायद थोड़ा बड़ा और ऑफिशियल कानूनी नाम लगे, पर दोस्तों ये हमारा घरों से, हमारे परिवार से और हमारे उन बुजुर्गों से जुड़ा मुद्दा है जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है। इस सेंसिटिव और बेहद क्रूशियल टॉपिक पर आज हम पूरी तफसील से बात करेंगे। ये दिन कैसे शुरू हुआ, इसका क्या महत्व है और एक समाज के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है, इन सब पर चर्चा होगी। पर चलिए इस गहरी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले दिमाग को थोड़ा सुकून देते हैं और सुनते हैं हमारे आज के प्लेलिस्ट का ये पहला बेहद सुनहरा और प्यारा गाना।

0: on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: Welcome back, दोस्तों. आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर हेलो इटानगर आपके इस दोस्त के साथ. ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी तमन्नाओं से भरी इस जिंदगी के उस

पहलू की जिसे हम ओल्ड एज यानी बुढ़ापा कहते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की शुरुआत कहां और कब हुई थी। बात है जून 2006 की, जब दुनिया भर के बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे INPEA यानी इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह महसूस किया कि पूरी दुनिया में बुजुर्गों के साथ जो बुरा व्यवहार या उन्हें अकेले छोड़ देने का सिलसिला चल रहा है उस पर कोई बात नहीं करता। लोग इसे घर के अंदरूनी मामला समझकर छुपा देते हैं। इसके बाद इस गंभीरता को देखते हुए दिसंबर 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली इस दिन को मनाने का रेजोल्यूशन पास किया और तब से हर साल 15 जून को यह दिन मनाया जाता है। 200 साल 2026 में इसकी थीम रखी गई है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क, यानी अब सिर्फ बातें करने का या स्टेटस लगाने का वक्त चला गया है, अब हमें असलियत में उन्हें बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। लेकिन जब हम इसका असर यानी हाउ इट अफेक्ट्स द विक्टिम्स पर बात करते हैं तो सच में रूह कांप जाती है। एल्डर अब्यूज का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होता दोस्तों, इसके कई रूप हैं, जैसे साइकोलॉजिकल अब्यूज यानी परिवार में उन्हें ताने मारना, डांटना, उनकी भाषा का मजाक उड़ाना या उन्हें एक कमरे में अकेला छोड़ देना, फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन यानी उनके प्रॉपर्टी या पेंशन के पैसे उनसे छीन लेना, और सबसे बड़ा है नेग्लेक्ट यानी उनके दवाई, खाने और हेल्थ पर ध्यान न देना। इसके असर ये होता है कि हमारे बुजुर्ग अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं, वो गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका खुद के बच्चों से भरोसा उठ जाता है। जो उम्र उनकी सुकून की होनी चाहिए वो दर्द और आंसुओं में बीतती है। चलिए इस मुद्दे पर हम आगे भी बात करेंगे, पर पहले सुनते हैं हमारी प्लेलिस्ट का ये दूसरा बेहद प्यारा गीत।

और एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर। दोस्तों, अब बात करते हैं ये मुद्दा हमारे सोसाइटी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा जो ट्राइबल सोसाइटी है ना, हमारा जो अरुणाचल है, यहां का इतिहास और संस्कृति हमेशा से बुजुर्गों को सबसे ऊंचा दर्जा देते आई है। हमारे यहां उन्हें घर का श्रृंगार और ज्ञान का भंडार माना जाता है। लेकिन आजकल मॉडर्न होने के होड़ है, कहीं ना कहीं मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे रिश्तों पर भारी पड़ रही है। न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है और बुजुर्ग अकेले होते जा रहे हैं। अगर समाज में बुजुर्गों का अपमान होगा तो वो समाज कभी भी संस्कारी या आगे नहीं बढ़ सकता। यहां पर मैं अपने पर्सनल थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। दोस्तों, मेरी ये मानना है कि हम आज जो कुछ भी है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो जमीन है, हमारा जो ज्ञान है, वो सब हमारे बुजुर्गों की बदौलत है। उन्होंने अपनी जवानी हमारे कल को बनाने में खर्च कर दी। अब जब उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके आंखें कमजोर हो गई है, तो ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम उनका हाथ थामें। उन्हें पैसे से ज्यादा हमारे वक्त और इज्जत की जरूरी होती है। रात को जब स्क्रिप्ट आप तक कर गर लौटते हैं तो बस 10 मिनट उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि पापा मम्मी आपने खाना खाया, आप कैसे हैं। देखिए उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी वो दुनिया का सबसे बड़ी खुशी है। हम समाज में क्या योगदान दे सकते हैं? सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। अपने बच्चों को बचपन से सिखाएं कि दादा दादी नाना नानी का आदर कैसे करना है। अगर आपके पड़ोस में कोई अकेले बुजुर्ग रहते हैं तो उन पर नजर रखें।

उनकी सब्जी लाना हो या दवाई उनकी मदद कीजिए। अगर आप समाज में कहीं भी किसी बुजुर्ग के साथ गलत होता देखे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बैंक हो या रास्ता, तो चुपचाप मत रहिए, उनके साथ खड़े होइए और उनकी आवाज बनिए। दोस्तों, आज हेलो ईटानगर में हमने एक बहुत ही सेंसिटिव और अहम मुद्दे पर बात की। अब कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन अवसर पर कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वस्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। विमानन क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। बर्मिंगम में महिला

ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के कुछ भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और दक्षिण छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो जाने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं गरज के साथ आंधी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली से समाचार का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है, लेकिन दोस्तों माया नगरी मुंबई की चमक दमक और सितारों की चटपटी खबरों का बाजार तो अब गर्म होने जा रहा है। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपकी आरजे याजू और शुरू हो चला है आपका अगला कार्यक्रम फिल्मी गपशप। आप सभी को इस खूबसूरत सोमवार की सुबह मुबारक हो। आज तारीख है 15 जून 2024 और माया नगरी से जो सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट नंबर 1 द बिग YRF स्पाई यूनिवर्स अपडेट। दोस्तों इस वक्त यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। आदित्य चोपड़ा ने अपनी आने वाली मेगा बजट फिल्म पठान 2 की स्क्रिप्टिंग ब्लॉक कर दी है और खबर है कि शाहरुख खान के साथ इस बार साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार का कैमियो फाइनल हो चुका है। शूटिंग इसी साल के एंड में शुरू होने वाली है और सोशल मीडिया पर अभी से फैनमेड पोस्टर्स ट्रेंड करने लगे हैं। चलिए इस ब्लॉकबस्टर खबर के बाद रुक करते हैं सुरों की महफिल की तरफ। सुनते हैं हमारी प्लेलिस्ट का ये पहला खूबसूरत गाना जिसके बाद हम लौटेंगे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अरुण एफएम पर और आप सुन रहे हैं फिल्मी कपशप आपके इस दोस्त के साथ। अब रुक करते हैं हमारे कंट्रोवर्सी कॉर्नर की तरफ। बॉलीवुड हो और वहां कोई पंगा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस वक्त इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है वो है एक टॉप डायरेक्टर और एक लीडिंग एक्ट्रेस के बीच स्क्रिप्ट चेंजेस को लेकर हुई अनबन। खबर यह है कि एक्ट्रेस ने शूटिंग शुरू होने के ठीक दो दिन पहले फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उनका कहना था कि उनके किरदार को अचानक से कम कर दिया गया। डायरेक्टर ने कल रात एक इंटरव्यू में भी बिना नाम लिए कहा कि कुछ एक्टर्स का ईगो फिल्म से बड़ा हो जाता है। अब दोनों के पीआर टीम्स आपस में लड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग दोनों को लेकर बातें हुए हैं। चलिए इस गर्मा गर्म मिजाज को थोड़ा ठंडा करते हैं और सुनते हैं हमारे प्लेलिस्ट का ये दूसरा बेहद खूबसूरत रोमांटिक गाना।

और एक बार फिर से स्वागत है आपका अरुण एफएम पर। फिल्मी कपशप का सिलसिला जारी है और हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी बॉक्स ऑफिस और रिव्यूज में। दोस्तों, इस पिछले फ्राइडे यानी 12 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई है इस साल की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर रेडर, जिसमें रणवीर सिंह एक नए बैडास अवतार में नजर आ रहे हैं। अगर पहले दो दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 75 करोड़ का जबरदस्त आंकड़ा पार कर लिया है। क्रिटिक्स का कहना है कि रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस उनके करियर की सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है और बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम टॉप नॉच है। अगर आप इस वीकेंड थोड़ा ट्रेलर और धमाल देखने चाहते हैं तो रेडर आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। रिव्यूज तो हो गए, अब सुनते हैं हमारे प्लेलिस्ट का ये तीसरा सुपरहिट गाना।

और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर पर फिल्म एक गपशप। अब वक्त हो चला है हमारे सबसे मजेदार सेगमेंट का, यानी बॉलीवुड गॉसिप्स। चलिए थोड़ी अंदर की बात करते हैं। मुंबई की फिल्मी गलियारों से बिल्कुल ताजा खबर आ रही है कि कार्तिक आर्यन और उनकी आने वाली फिल्म के कोस्टार को परसों रात मुंबई के एक अपस्केल रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए स्पॉट किया गया। दोनों ने मैचिंग आउटफिट्स पहने हुए थे और मीडिया को देखकर काफी शाय हो गए। हालांकि दोनों ने हमेशा खुद को जस्ट गुड फ्रेंड्स कहा है, पर उनके दोस्तों का कहना है कि इनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ चल रहा है। चलिए दोस्तों, आप इस गॉसिप को हजम कीजिए, तब तक मैं प्ले करती हूँ आज के चौथा सुपर रोमांटिक गाना।

दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है फिल्मी गपशप में। थिएटर्स के बाद आप रुक करते हैं हमारे घर के स्क्रीन की तरफ, यानी ओटीटी अपडेट्स। दोस्तों ओटीटी पर इस वक्त हमारा अगर किसी शो का सबसे भयानक क्रेज है तो वो है असुर सीजन 3 का। पिछले हफ्ते ही इसके सारे एपिसोड ड्रॉप किए गए हैं और अरशद वर्सी और वरुण सोपती की इस साइकोलॉजिकल ट्रेलर ने दोस्तों इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। इस बार का सस्पेंस और माइथोलॉजी का ब्लेंड इतना खतरनाक है कि लोग रात रात भर जाकर इसे बिंज वॉच कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो स्पॉइलर से बचिए और आज ही इसे चेकआउट कीजिए। चलिए इस जबरदस्त ओटीटी अपडेट के साथ सुनते हैं हमारी प्लेलिस्ट का ये दूसरा बेहद एनर्जेटिक गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, फिल्म गपशप का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और अब वक्त है हमारे दूसरे सेगमेंट का। दोस्तों, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और रणवीर कपूर ने कल शाम को ऑफिशियली अपने आने वाली सबसे बड़ा धमाका फिल्म एनिमल पार्क का प्री प्रोडक्शन अपडेट शेयर किया है। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और रणवीर कपूर अगले महीने से अपने डबल रोल अवतार के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं। इस बार फिल्म में एक्शन पहले से 4 गुना ज्यादा होने वाला है। चलिए, शानदार अनाउंसमेंट के बाद सुनते हैं हमारी ये दूसरा बेहद प्यारा गाना।

एक बार फिर स्वागत है आपका अरुण एफएम पर। दोस्तों, आजकल मूवीज से ज्यादा इंडिपेंडेंट म्यूजिक ट्रैक्स और रील्स पर चलने वाले गाने हिट हो रहे हैं। इस हफ्ते एक नए इंडी आर्टिस्ट का गाना इंस्टाग्राम रील्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है और करीब 2 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स ने उस पर वीडियोस बना ली है। संगीत का मिजाज बदल रहा है और हमारे इंडी आर्टिस्ट अब बड़े फिल्मी गानों को कड़ी टक्कर दे रहा है। गपशप का सिलसिला यहां पूरा होता है। चलिए अब सुनते हैं आज का आखिरी गाना, फिर आते हैं सीधे शो के ग्रैंड क्लोजिंग सेगमेंट पर। स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों ये थी फिल्मी गपशप, उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट दोस्त। यह आकाशवाणी जानवर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मूज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मूज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. The United States and Iran has finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S. West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
2: UN Secretary General Antonio Guterres has welcomed the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, reopening of Strait of Hormuz, as well as a framework for further negotiations. Secretary General spokesperson Stefan Zurich said that this represents a critical step towards the peaceful settlement of the conflict. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart, Robert Fico, in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to the country after completing the first leg of his visit to Nice in France. In a social media post, Mr. Modi said, "This visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Ivan in France today. The three-day event is being attended by G7 members, including Canada, France, Germany, Italy, Japan, the UK, US and European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit. As a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. Mr. Modi's participation in the G7 summit underscores India's important role in global geopolitics. Union Minister for Ministry of Road and Transport and Highways, Nitin Gadkari, will visit Shillong today to participate in key events focused on infrastructure development and connectivity in the Northeast region. The Union Minister will inaugurate the Northeast India Infrastructure Summit and Exhibition, NEII-NFRA 2026, today at the Larathi Performance Center in Wakasiang, Shillong. He will also attend the CEO's Roundtable at the NEII-NFRA, which serves as a premier platform for discussions on infrastructure development, investment opportunities and regional growth, bringing together policymakers, industry leaders, investors and other stakeholders from across the country. India Meteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam, Meghalaya during next 6 to 7 days. Parts of northeast India and West Bengal will witness heavy rainfall today. The Met Department said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into more parts of Maharashtra, some parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Orissa, Jharkhand, Bihar and South Chhattisgarh during next 4 to 5 days. In ICC Women's T20 World Cup opener, India defeated Pakistan by 64 runs in Group A match at Edgbaston in Birmingham last night. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan.

0: दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से समाचार का सिलसिला यहीं पर थमता है, लेकिन आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर अब वक्त हो चला है एक ऐसे सफर का जहां ना कोई बंदिश है ना कोई नियम और कायदे, क्योंकि इस शो के असली डायरेक्टर, असली प्रोड्यूसर और असली मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हैं। जी हां, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आखिरी और सबसे प्यारे लाइव सेगमेंट में जिसका नाम है रेडियो ऑन डिमांड। मैं हूं आपकी दोस्त और हमेशा की तरह अगले कुछ घंटे सिर्फ आपके मैसेजेस और आपकी पसंद के सुनहरे सुरों के नाम होने वाले हैं।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

तो चलिए खोलते हैं फरमाइशों का ये सुनहरा पिटारा और रुक करते हैं हमारी पहली मैसेज की तरफ जो आई है हमारे पड़ोसी राज्य असम से। दोस्तों हमारी जो पहली फरमाइश आई है वो भेजी है हमारे रोजाना सुनने वाले बेहद प्यारे दोस्तों रोमेश रूनू और लक्की जी ने, जो हमें सुन रहे हैं गोलाघाट असम से। आप तीनों को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। आप तीनों ने जिस गाने की फरमाइश की है वो 90s का एक ऐसा नगमा है जो इंसान को गहरी सोच में डाल देता है। फिल्म दलाल से कुमार सानू की आवाज में गाया हुआ ये आइकॉनिक गीत चलिए सुनते हैं रोमेश जी रूनू और लकी की डिमांड पर ये सुनहरा गाना ठहरे हुए पानी में।

दोस्तों क्या लिरिक्स था सच में। हमारे गोलाघाट के दोस्तों रोमेश, रूनू और लकी जी ने सुबह सुबह मन को एकदम शांत और सुनहरा बना दिया है। थैंक यू सो मच आप तीनों को इतनी कमाल की चॉइस के लिए। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं हमारे अगले लिसनर की तरफ। ये मैसेज हमें भेजा है सानू प्रधान जी ने, जो हमें सुन रहे हैं गोपुर असम से। सानू जी कैसे हैं आप? आपकी फरमाइश हमारे सिस्टम पर मिल चुकी है, आपने गाने भी चुना है, तो एकदम नए जमाने का बेहद दिलदार और सुकून भरा ट्रैक फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से श्रेय घोषाल और की आवाज में गाया हुआ ये वो गाना है जो उन सभी के लिए है जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनके साथ बिताए हर लम्हे को रोक लेना चाहते हैं। सानू प्रधान जी की फरमाइश पर पूरे गोपुर और ईटानगर के लिए पेश है, थोड़ी देर सुनिए और महसूस कीजिए।

सच में सानू प्रधान जी, गोपुर से आपने जो ये गाना चुना उसे सुनकर लगता है कि वक्त यहीं पर थम गए और ये खूबसूरत सुबह यूं ही चलती रहे। बेहद प्यारी चॉइस थी आपकी सानू जी, आशा करती हूँ आपको अपना गाना सुनकर मजा आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी फरमाइश की तरफ। ये फरमाइश आई है एक पूरे दोस्तों के ग्रुप की तरफ से, टेंशन क्रो, सरलो एक्रो और रोजमेरी टेरनपी जी की तरफ से, और ये हमारे पलके यानी हमारी डेली लिसनर की जोड़ी है जो लंकंग सम आसाम से हमें हर रोज अपने ढेर सारा प्यार भेजते हैं। आप तीनों को पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार। आप तीनों ने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो तो लगता है सीधे संगीत के सुनहरे दौर से निकलकर आया है। फिल्म साहिबा का टाइटल ट्रैक साहिबा मेरे साहिबा, जिसे अनुराधा पौडवाल और जोली मुखर्जी ने अपनी आवाज से सजाया है। ये गाना पुरानी यादों की उन गलियों में ले जाता है जहां प्यार बहुत मासूम हुआ करता था। तो टेंशन क्रो जी, सरलो जी और रोजमेरी जी, आप तीनों की दोस्ती के नाम पेश है ये खूबसूरत नगमा।

बात है दोस्तों, टेंशन क्रोच जी, सरलो जी और रोजमेरी जी, लंकमसम से आप तीनों ने तो आज की महफिल में सच में चार चांद लगा दिए। ये गाना सुनकर 90s का वो दौर आंखों के सामने आ गया जब माधुरी दीक्षित और ऋषि कपूर साहब स्क्रीन पर जादू बिखेरा करते थे। आपकी दोस्ती यूं ही बनी रही और आप रोज हमें ऐसे ही प्यारे गाने भेजते रहे।

दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। जब तक उनका मैसेज ना आए हमारी सुबह पूरी नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी बेहद प्यारी और डेली लिसनर ज्योति सुरीन जी की। ज्योति जी, आपको इस दोस्त का ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच हमें रोज इतना सारा ध्यान और सपोर्ट देने के लिए। आज ज्योति जी ने जो गाना चुना है ना दोस्तों, वो सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि दो दिलों के बीच का एक खूबसूरत वादा है। फिल्म जलेबी से श्रेया घोषाल और हमारे सबके चहेते लेत शान संगीत केके की आवाज में गाया हुआ ये गीत दिल को छू लेने वाला लिरिक्स है इसके। तो हमारे स्पेशल लिस्नर ज्योति सुरीन जी की फरमाइश पर आप सभी के दिलों को ठंडक पहुंचाने के लिए पेश है ये बेहद खूबसूरत ट्रैक तेरा मेरा रिश्ता। सुनिए और खो जाइए इसके सुरों में।

0: ये तेरा मेरा रिश्ता खुदा ने बनाया है ना। केके और श्रेया घोषाल की आवाज का ये जादू जब भी कानों में पड़ता है दिल एकदम भावुक हो जाता है। ज्योति जी, सच में आपकी चॉइस का कोई जवाब नहीं है। इस सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको अपना गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड पर गानों और नामों का ये प्यारा सफर यूं ही चलता रहेगा। अगला गाना कौन सा होने वाला है और किसकी फरमाइश पर आने वाला है ये जानने के लिए कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM, आपकी नए सवेरे की आवाज।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Dosto, ज्योति के उस प्यारे से गाने के बाद अब रुक करते हैं हमारे एक और रोजाना सुनने वाले बेहद खास लिसनर की तरफ। ये मैसेज हमें भेजा है विमल बासुमतरी जी ने, जो हमें सुन रहे हैं जोनाई सपोरी धेमाजी आसाम से। विमल जी, आपको आपके इस दोस्त का बहुत सारा प्यार। दोस्तों, विमल जी ने जो गाना चुना है ना, उसे सुनते ही आपके पैरों के कदम रुकेंगे नहीं। फिल्म बिच्छू से बॉबी देओल और रानी मुखर्जी का वो धमाकेदार गाना जिसे अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ने गाया था, ये गाना इतना एनर्जेटिक है कि सुबह सुबह आपको आपका जोश दुगना कर देगा। तो चलिए विमल बसुमतर जी की फरमाइश पर पूरे धेमाजी और जोनाई सपोरी के लिए प्ले करते हैं ये सुपरहिट ट्रैक प्यार तू दिल तू जान तू।

बाबा बिमल जी, सुनाई सपौड़ी से आपने ये गाना बजवा कर पूरे टानागर का माहौल एकदम धमाकेदार कर बना दिया। चलिए अब इस जोश के बाद थोड़ी सी मिठास घोलते हैं और मिलते हैं हमारे एक और बेहद लॉयल लिसनर से। इनका नाम है कविता जी, जो हमें सुन रही है बालीपुरी से। कविता जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़ी रहती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी ने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो उन दिनों की याद दिलाता है जब रिश्तों में एक शरारत और एक प्यारी सी शर्म हुआ करती थी। संजय दत्त और उर्मिला मटोंडकर की फिल्म खूबसूरत से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में गाए हुए ये गाना दिलों को सुकून देता है। तो हमारी प्यारी लिसनर कविता जी की डिमांड पर पेश है ये खूबसूरत नगमा, घूंघट में चांद होगा। सुनिए और इस मिठास को महसूस कीजिए।

क्या बात है। बालीपुरी से कविता जी, आपकी चॉइस ने तो सुबह सुबह सच में चांदनी बिखेर दी है। बेहद खूबसूरत गाना। चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं हमारे अपने शहर की तरफ, यानी सीधे नाहरलगुन। हमसे जुड़े हैं हमारे एक और बहुत ही प्यारे लिसनर, जिनका नाम जितना दमदार है उनकी पसंद उतने ही नरम और दिल के पास है। जी हाँ, हमारे बाहुबली दास जी जो नाहरलगुन से हमें सुन रहे हैं। बाहुबली जी ने जो गाना चुना है वो उन सभी के लिए है जिनकी मोहब्बत थोड़ी खामोश होती है, जो दिल की बात होठों तक नहीं ला पाते। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से रणबीर कपूर पर फिल्माया गया और आतिफ असलम की आवाज में गाया हुआ यह आइकॉनिक सैड रोमांटिक सॉन्ग। दोस्तों, इस गाने का एक एक लफ्ज सीधे दिल के पार जाता है। तो नाहरलगुन से बाहुबली दास जी की फरमाइश पर पेश है ये दर्द से बड़ा बेहद प्यारा ट्रैक, तू जाने ना। सुनिए और खो जाइए इसके एहसास में।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गई अत तथा तकनीकी अभियंता पीवी द्योरे। दोस्तों कहीं मत जाइएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे दुनिया के साथ। तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ। तो अब अपनी आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल के बात। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया

0: पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रही हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार में आज बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 1200 अंक की बढ़त के साथ 76725 पर, जबकि निफ्टी लगभग 360 अंक की बढ़त के साथ 23985 पर कारोबार कर रहा था। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्वसनीय विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हुए हादसे में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कल वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवड़ी के पास हुआ था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोमादेवरा को बधाई दी है। दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on 19th of June in Switzerland. Mr. Trump

थी आरजे दुनिया। दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक एलताली तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, दूसरी प्रसारण सभा का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्मी लहर।

दोस्तों वो कहते हैं ना कि कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो लफ्जों में बयान नहीं किए जा सकते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। और गाने गाने वही एहसास हम तक पहुंचाने का सबसे खूबसूरत जरिया होता है। कभी हमारी कहानी बन जाती है, कभी हमारे जज्बात, और कभी बस एक ऐसा साथी जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाता है। तो चलिए अब वक्त है कुछ ऐसे ही दिल को छू लेने वाले गानों का जो आपके हर एहसास को आवाज देंगे। और फिल्म लहर कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे चांदनी चौक तो चाइना फिल्म से तेरे नैना, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज में।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं चलते चलते फिल्म से तौबा तुम्हारे इशारे, अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की मधुर आवाजों में।

0: दोस्तों, फिल्म लहर कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना। लुटेरा फिल्म से मोंतारे, स्वानंद किरकिरे और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में। इसी के साथ ही दोस्तों, फिल्म लहर कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। तो दोस्तों, चलिए कुछ वक्त के लिए हिंदी फिल्म सॉन्ग से ब्रेक लेते हैं और एंजॉय करते हैं कुछ सूदिंग वेस्टर्न सॉन्ग्स।
1: Hello guys and welcome to the Western Music Program only on Akashwani Itanapur. I am Sam, your host for the day. Today's playlist feels like a snapshot of youth in motion, late night phone calls, missed chances, impossible crushes, and the kind of feelings that seem overwhelming in the moment but becomes a story we carry with us. We kick things off with a song that feels effortlessly cool. The Adults Are Talking blends sharp riffs and subtle tension into a track that explores miscommunication, expectations, and a distance that can grow between people.

0: दस्तावेज सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashwani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
2: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Mukesh Kumar Bal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
4: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा।
2: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और GST के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मादेवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
5: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform to engage with world leaders on issues vital not to just India but to the entire global south. Notably, this marks India's 13th participation at the G7 summit and the Prime Minister's 7th consecutive participation. India's regular participation at the G7 summits reflects the increasing recognition of New Delhi's role and contribution in the addressing global challenges related to peace, security, development and environmental sustainability. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
3: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no food shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mind Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal. She said sufficient quantity of fertilizers is available for the Kharif crop season. Union Minister for the Ministry of Road Transport and Highways Nitin Gadkari will visit Shillong today to participate in key events focused on infrastructure development and connectivity in the Northeast region. The Union Minister will inaugurate the Northeast India Infrastructure Summit and Exhibition 2026 today at the Lariti Performance Center in Mokka Siang, Shillong. The United States and Iran have finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. Benchmark domestic equity indices witnessed strong gains in the forenoon session today following the announcement of a peace deal between the United States and Iran. The Sensex climbed 1,090 points to 76,618, while the Nifty advanced 336 points
6: to 23,958 when reports last came in. In the FIFA World Cup, Ivory Coast defeated Ecuador by 1-0 in its first World Cup appearance in a dozen years in Group E match at Philadelphia Stadium today. In another encounter, Sweden thrashed Tunisia 5-1 in their Group F match at the Monterrey Stadium in Mexico. In today's fixture, Spain will play against Cabo Verde in their Group H match at the Atlanta Stadium in the United States. The game will start at 9:30 p.m. IST. And with that, we end this news bulletin.

दोस्तों अभी आपने सुना हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स।

दोस्तों, फिल्मों के गाने तो हम सुनते ही हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन म्यूजिक की दुनिया सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं होती। कुछ ऐसे भी गाने होते हैं जो बिना किसी फिल्म के हिस्सा बने भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो दोस्तों, आइए फिल्मी दुनिया से थोड़ा हट कर चलते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन नॉन फिल्म सॉन्ग्स।

राजस्थान की रेत भरी धरती से एक ऐसी आवाज उठी जिसमें लोक संगीत की रूह बसती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मामे खान की। मामे खान इंडिया के मशहूर फोक सिंगर है जो मंगानी यार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनका म्यूजिक राजस्थान की रेत की महकती हवाओं, ढोलक की ताल और सूफियाना जज्बात से भरा होता है। फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बनाए गाने चौधरी के जरिए, जिसे कोक स्टूडियो में सुनते ही सबने दिल से महसूस किया। उसके बाद एतबार, बद्र की दुल्हनिया और बाजरादा सीता जैसे हिट्स ने उन्हें और बुलंदियां दी। मामे खान सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक जज्बा है जो इंडिया के फोक म्यूजिक को दुनिया तक ले जाती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं मामे खान की आवाज में चौधरी।

0: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स ही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला में। ये कार्यक्रम सिर्फ संगीतों का कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारी ओर से छोटी सी कोशिश है हमारे फौजी भाई बहनों को शुक्रिया कहने का, जो हर पल अपने फर्ज पर कायम रहते हैं, आप सबकी वीरता और समर्पण को हम सैल्यूट करते हैं। तो आइए इस देशभक्ति भावना के साथ शुरू करते हैं गीतमाला कार्यक्रम। और पहला गीत आप सुन पाएंगे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है उदित नारायण ने।

जी हिंदुस्तान अरुण एफ एम 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं हमारे फौजी भाई बहनों के लिए सजाया गया ये खास कार्यक्रम गीत माला। दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ संगीत नहीं होते बल्कि एहसासों का एक समुन्द्र होते हैं। ऐसे एक गाना है लुका छुपी बहुत हुई फिल्म रंग दे बसंती का। ये गीत एक माँ और उसके बेटे के बीच के उस अनमोल रिश्ते को दर्शाता है जहाँ इंतजार, यादें और बिछड़ने का दर्द साफ महसूस होता है। जब हम इस गीत को सुनते हैं तो हमें उन वीर जवानों की भी याद आती है जो देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सोचे जरा उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जो उन अपने वीर जवानों का इंतजार करते हैं, और जब कोई जवान देश के लिए शहीद हो जाता है तो उसके परिवार के लिए वो इंतजार हमेशा के लिए एक याद बनकर रह जाती है। ये गीत उसे ममता, उसे प्यार और उसके खालीपन को महसूस कराता है। तो दोस्तों, हमारे वीर जवानों के परिवारों को सलाम करते हुए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत लुका छुपी बहुत हुई, लता मंगेशकर और ए आर रहमान की आवाज में।

दोस्तों, गीत माला कार्यक्रम का अंतिम लेकिन बहुत ही दमदार गीत आप सुन पाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का इंडिया वाले इस गीत को गाया है नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन ने।

दोस्तों इसी के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइन सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and the European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and the UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow, a report from our correspondent.
2: The G7 summit under the French presidency had chosen some key priorities for the current year. In broader terms, these include reducing excessive macroeconomic imbalances, fostering shared growth, and renewing international partnerships. Discussions are also expected on strengthening the resilience of critical and mineral value chains, protecting miners online, and settling major geopolitical crises. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian tomorrow to participate in the summit. The Prime Minister is visiting the French city at the invitation of French President Emmanuel Macron. The visit holds immense significance, providing Prime Minister Narendra Modi a crucial platform.

0: platform to engage with world leaders on issues vital not to just India but to the entire global south. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
1: Prime Minister Narendra Modi has said the middle class of the country have contributed to nation building in countless ways, and the NDA government is privileged to be working towards fulfilling their aspirations. In a social media post, Mr. Modi noted that over the last decade, governance has increasingly focused on improving the quality of life of ordinary citizens. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the country has adequate buffer stock of food grains and there will be no food shortage despite the impact of El Nino conditions. Speaking at the Mind Mine Summit in New Delhi today, the Finance Minister stated that the southwest monsoon rainfall this year is expected to be below normal.
2: This year, because of the El Nino, I think we are preparing for not so good a monsoon. Of course, we have enough buffer stocks. Since last year, we've maintained, so there shouldn't be a food shortage. But for farmers, it will have an impact because this year, his income will be stressed out.
1: Union Ayush Minister Pratap Rao Jadhav today said the main national event of International Day of Yoga 2026 will be held in Kolkata on the 21st of June, with Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations. Addressing the curtain raiser press conference for the International Day of Yoga 2026 in New Delhi, the minister noted that the theme for International Day of Yoga 2026 is Yoga for Healthy Aging, which addresses one of the most significant challenges of the modern era. The United States and Iran have finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on his Truth Social platform last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. The peace agreement will be signed on the 19th of June in Switzerland. Mr. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. Benchmark domestic equity indices witnessed strong gains in the afternoon session today. Following the announcement of a peace deal between the United States and Iran, the Sensex climbed 922 points to 76,450, while the Nifty rose 287 points to 23,910 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के बाद अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
4: हेलो नमस्ते, मैं आसाम से बोल रहा हूँ, हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट से। मेरा गांव का नाम है लाला बाजार। आज पहली बार मैंने कॉल पाया हूँ।
5: अच्छा, आप पहली बार आकाशवाणी ईटानगर में कॉल कर रहे हैं।
4: है।
5: जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: ईटानगर तो हम लोग सुनते भी है।
5: अच्छा अच्छा,
4: मीडियम में तो हेलो फरमाइश 8 बजे देता है ना।
5: हाँ जी हाँ जी, सही कहा।
4: मैं सुनता हूँ और आज नंबर लेके फोन कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन
5: अच्छा
4: नहीं मिल रहा है।
5: जी जी जी, काफी लोग कॉल करते हैं ना, इसीलिए लाइन बिजी रहता है। जी,
4: हमारे आसाम से तो बहुत लोग करते हैं।
5: हाँ जी हाँ जी, बहुत लोग सुनते हैं आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो आपका नाम जान सकता हूँ मैं?
4: मेरा नाम है रांतो पुरुकास्तो।
5: रांतो पुरकास्टो, ओके। और आप क्या क्या प्रोग्राम सुनते हैं रांतो जी? हेलो फरमाइश से
4: तो हिंदी गान का प्रोग्राम ज्यादा सुनते हैं।
5: अच्छा अच्छा, गाना आपको बहुत ही पसंद है।
4: गाना बहुत अच्छा लगता है।
5: जी जी,
4: नया नया गाना सुनाई देता है।
5: हाँ जी हाँ जी,
4: कुमार सानू जी, उदित नारायण जी का कभी गाना सुनता हूँ।
5: ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर है कुमार सानू, उदित नारायण?
4: कुमार सानू, उदित नारायण, अरिजीत सिंह।
5: अच्छा अच्छा अच्छा जी,
4: अरमान मल्लिक।
5: ओके,
4: कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ, ईटानगर से बात करूंगा, ईटानगर से बात करूंगा, लगा आज तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ गया।
5: जी, आपका पहला कॉल है, फर्स्ट कॉल,
4: फर्स्ट कॉल।
5: हाँ जी हाँ जी, तो रांतो जी, आप सिर्फ हिंदी गाना सुनते हैं या फिर?
4: मुझे फोन नंबर दिया है देवजीत।
5: अच्छा अच्छा, देवजीत दान ने दिया आपको? ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे से आप हमें कॉल करते रहेगा?
4: हम लोग कॉल करेंगे।
5: ओके,
4: बंगाली आता है आपको?
5: हाँ जी थोड़ा थोड़ा बहुत।

0: चाहते हैं?
1: ये गाना तो हम देवजीत भाई को विशेष कर सुनाना चाहते हैं।
0: ओके
1: और ईटानगर केंद्र में तो मैं हम फास्ट फोन किया, जो लोग ईटानगर सुनते हैं सभी कॉलर को हम ये गान डेलीगेट करते हैं।
0: ओके ओके ओके जी, तो रांतो जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना
1: आप
0: सुना रहे हैं।
1: भी ये गाना सुनना।
0: हाँ जी, मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ।
1: ठीक है सर,
0: ओके
1: रखता हूँ।
0: ओके ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: हेलो फरमाइश ईटानगर
1: सर नमस्कार
0: जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। धन्यवाद सर।
0: जी।
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: टेकचंद अग्रवाल।
1: जी सर।
0: ओके, आप पहली बार कॉल कर रहे हैं हमें।
1: नहीं सर, मैं आज से 4-6 महीने पहले किया था, 6 महीने हो गए मेरे को लग रहा
0: अच्छा, जी।
1: है। ये मेरी दूसरी या तीसरी बार बात हो रही है।
0: ओके जी, आपने दूसरे श्रोताओं को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: जी।
1: क्या
0: हाँ जी।
1: है, बीच में सर कुछ गैप हो गया था।
0: अच्छा,
1: जी
0: और कहीं बिजी थे आप?
1: नहीं सर, बिजी नहीं थे, कार्यक्रम तो सुनते रहते हैं, लेकिन होता यह है कि कई बार सर लगाव तो लगता नहीं है, कई बार सर थोड़ा हमें गैप भी देना पड़ता है।
0: ओके, सही बात। जी। आजकल लोग
1: जी
0: ज्यादा कॉल करते हैं ना, तो लाइन ज्यादा ही बिजी रहता है।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: चलिए, आज तो आपका कॉल लग गया, तो
1: जी
0: इसी खुशी में कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए।
1: सर। मुझे सुनवा दीजिएगा, तेरे घर के सामने का 1963 की फिल्म थी, देखो रूठा ना करो।
0: ओहो, वाह वाह वाह, कोई
1: जी
0: रूठा हुआ है क्या टेकचंद जी?
1: नहीं, सर बस
0: गाने अच्छे लगते
1: गाने
0: हैं।
1: सर दिल को सुकून देते रहेंगे
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे।
1: और
0: हाँ जी,
1: अपनी बात कहने का कुछ मौका भी मिल जाता है।
0: हाँ सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, समझने वालों को
1: जी जी
0: इशारा काफी होती है
1: बिल्कुल
0: जी। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे टेकचंद जी इस गीत
1: सर।
0: को?
1: हमारे मित्र सबसे पहले आप सुनिए सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी
1: और उसके बाद हमारे मित्र है लोकेंद्र वर्मा जी, और विजय पांडे जी है, शारदा प्रसाद प्रजापति जी है, और गौतम रायबोली जी है। इन सभी मित्रों के साथ में सुनवा दीजिए सर, क्योंकि एकता रेडियो श्रोता जो हमारी जो कैनसी ग्रुप है
0: जी, उसमें तो
1: उनके साथ
0: काफी
1: में
0: श्रोता
1: सभी
0: है।
1: मित्रों को डेली कर दीजिए।
0: जी, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी जी
0: ना करो बात नजर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: सर, हम धेमाजी असम जिला मुनिसिपल सकुरी से बिमल बसुमतारी बोल रहे हो सर।
0: जी बिमल बसुमतारी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए कैसे हो आप?
1: जी सर, हम ठीक है। अभी खेत में गया था, खेत से हल मार के अभी आया है घर में सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा सुबह सुबह जाते हैं आप?
1: जी सर।
0: ओके, दिन को तो गर्मी होती है ना।
1: जी सर,
0: ओके ओके, जी जी जी
1: अभी फिर खाना पीना खाके फिर दुकान में जाएगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा डबल काम, डबल ड्यूटी।
1: जी सर, अकेला आदमी है ना, करना पड़ेगा ना सर।
0: ओके जी जी जी हाँ, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। हाँ जी
1: जी सर, करना
0: जी जी
1: पड़ेगा
0: जी जी
1: ना।
0: ओके ओके।
1: जी
0: तो
1: सर,
0: दुकान में बैठ के कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: गाना तो हम आज सुनना है सर, हमको दग भी पा रहता है, दिल भी जाना ना जाने की तो हो गया ये गाना।
0: ओके जी
1: जी सर, ये गाना हम दोस्त लोग के लिए डिलीट करना चाहते
0: जी
1: सर।
0: जी जरूर जरूर ना।
1: हम लोग का उमल बसुंदर है, फैकम मुंडा है, पंजुली बसुमतर है, सुनीता बसुंदर, रमेश पात्र, सुखबिला मिथा, रमेश प्रजापति, अंशुला बसुमतर, पूरम वर्मा, अविनाश, दुर्गेश नगनकोरी, हितेंद्र दास, जोगिंदर रंपी, गोल्डी, अविनाश, शिकारी रंपी, भगवान सिंह, राकेश और आपको भी सर, सबके
0: जी
1: लिए डिलीट करना चाहता हूँ सर।
0: ओके, सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो विमल जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी सर।

0: हेलो, फरमाइश।
1: परम माननीय महोदय, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार आपको भी, आकाशवाणी ईटानगर परिवार की ओर से।
1: जी हृदय से धन्यवाद। मानवर मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
0: शारदा प्रसाद जी।
1: प्रजापति श्री राम से आदरणीय वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ। बड़ा सौभाग्य है कि मुझे एक बार पुनः आप वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं
0: जी
1: तो बहुत ही गद और सुखद अनुभूत करता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, तहे दिल से धन्यवाद। आप हमसे जुड़ते हैं और अच्छे अच्छे गीत अपने मित्रों और हमें भी सुनाते हैं। जी
1: जी, ये तो आकाशवाणी का ही एक लक्ष्य है,
0: जी
1: सूचना शिक्षा मनोरंजन। यदि इसमें मनोरंजन नहीं होगा, सूचना नहीं होगा, तो फिर आनंद कहाँ आएगा।
0: बिल्कुल
1: अच्छे
0: बिल्कुल।
1: अच्छे गीतों की अच्छी अच्छी वार्तालाप जब होती है, तभी तो कार्यक्रम अच्छा बनता है। और एक आकर्षक प्रोग्राम जब होता है, तो श्रोता भी इसमें आकर्षित होते हैं।
0: जी, श्रोता भी जुड़ते हैं हमसे ज्यादा से ज्यादा जी, और उनसे उनके बारे में जान करके हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है, अपने
1: जी
0: बारे
1: जी
0: में और अपने
1: और
0: जगह
1: ये
0: के बारे
1: तो
0: में।
1: मोबाइल एप्लीकेशन जब से आ गया है न्यूज ऑन AIR, अब से तो हमारे हाथ में एक जादू का पिटारा लग गया है।
0: जी
1: बस
0: जी
1: हम जो
0: जी
1: चाहें, जहां चाहें, जिससे चाहें उससे वार्तालाप कर लेते हैं और वहां के प्रोग्राम भी सुन लेते हैं।
0: जी जी जी जादू के पिटारे के जरिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कहिए, आज
1: जी
0: इस जादू के पिटारे से कौन सा गीत आपको सुनाए।
1: मानवर, आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है बॉर्डर। रूप कुमार राठौर ने इस गीत को गाया है।
0: जी
1: ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो। ये प्यारा सा गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आकाशवाणी ईटानगर से।
0: जी जरूर सुनाएंगे। और ये गीत हमें बॉर्डर की याद दिलाती है, जहाँ पे हमारे वीर सैनिक हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल। यदि वो सीमा पे इतने अच्छे प्रहरी नहीं हो और दुश्मनों से हमारी रक्षा ना करते रहो, तो हम चैन की नींद नहीं सो सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: और हम
0: बिल्कुल
1: चैन की नींद सोते हैं, आराम से रहते हैं और आनंद अनुभूत करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने जीवन को। ये सब हमारे जो वीर जवान है, सैनिक है, उनकी बदौलत हम सुख चैन से रहते हैं।
0: बिल्कुल सही
1: उन्हें
0: कहा
1: हम सत सत नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं।
0: जी। हमारी ओर से भी सत सत नमन, सैल्यूट उन सभी वीर सैनिकों को। और किन लोगों को
1: जी
0: सुनाना चाहेंगे इस गीत को।
1: मानव, सर्वप्रथम मैं अपने परम मित्र वागरा साहब को ये गीत समर्पित करता हूँ
0: तहे दिल से धन्यवाद जी।
1: और याद करना चाहता हूँ अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेंद्र वर्मा जी को, साथ में राजू यादव है, पुरुषोत्तम है, पुष्कर नाथ जी हैं, पूरन वर्मा जी, राकेश कुमार जी हैं। इन सभी दोस्तों के साथ साथ में हमारे मित्र हैं टेक चंद अग्रवाल, सतीश रघुवंशी। इन्हें भी ये गीत सादर समर्पित करता हूँ। और ईटानगर से जो जुड़ते हैं, जो स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं और इस कार्यक्रम को सुनते हैं, उन सभी श्रोताओं को भी ये प्यारा सा खूबसूरत गीत सादर समर्पित
0: सभी
1: करता
0: को
1: हूँ।
0: समर्पित करना चाहते हैं। जी। तो शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना बॉर्डर फिल्म से।
1: जी हृदय धन्यवाद, आभार,
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: जरा ठहरो, मैं भी तो चलता।

0: हेलो, फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं गुजरात से आपका अनियमित श्रोता धीरज जबारी, क्योंकि कई बार सुनता हूँ कई बार नहीं सुनता।
0: क्या बात है, लेकिन आप हमें याद करते हैं बीच बीच में, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको।
1: जी जी सर,
0: जी, और धीरज जी कहिए, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं सर। और मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, यानी
0: अच्छा,
1: बादल छाए हैं तो थोड़ा बहुत गर्मी से थोड़ी राहत मिली।
0: ओके। अभी तो सिर्फ बादल ही छाया हुआ है, बारिश तो हुई नहीं।
1: नहीं हुई सर,
0: ओके, होने की आशंका है,
1: आशंका है, लेकिन कई बार जो सुबह
0: धोखा
1: के
0: दे जाता है
1: बादल
0: ना।
1: होते हैं वो बारिश नहीं लाते, ऐसा कहा
0: जी, धोखा
1: जाता है।
0: धोखा दे जाता है बादल।
1: हाँ
0: चलिए, हम यही दुआ करते हैं इस बार
1: हम
0: धोखा ना दे। जी
1: जी। और हम अभी यहाँ बारिश में अभी मेरे ख्याल से थोड़ा हमें सब्र करना पड़ेगा,
0: ओके।
1: क्योंकि 15 जून के बाद यानी किसान भाई बारिश चाहते हैं, तो
0: अच्छा
1: हो
0: अच्छा
1: सकता है थोड़ा लेट हो सके। जी
0: ओके ओके ओके, चलिए
1: सर,
0: आशा करते हैं जल्दी ही बारिश हो, ताकि
1: हाँ सर,
0: हमारे किसान भाइयों को लाभ पहुंचे इससे।
1: बिल्कुल सर।
0: जी, तो धीरज जी आज कहिए, कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सर आज हमें सुनना है कुर्बानी फिल्म का गाना सुनना है, नाजी हसन के आवाज में, आप जैसा कोई नहीं। और सर हमारा आकाशवाणी फोनी नेक्ता ग्रुप में ग्रुप है, तो इसमें सर 100 के ऊपर सदस्य गण है,
0: ओके।
1: और आपको ईटानगर को हम समय अनुसार याद करते हैं सभी लोग।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना कुर्बानी फिल्म से।
1: धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश
1: नमस्कार सर, बहुत दिनों के बाद फोन मैंने लगाया।
0: जी। नमस्कार, चलिए आपने बहुत दिन ही सही हमें याद तो किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, आप तो तारीफ के काबिल भी हैं।
0: क्या
1: अब
0: बात
1: मैंने पहले भी तारीफ किया था, वाकई अनाउंसर आप हैं, इसमें कोई शक नहीं, आवाज की धनी है आप। मैं शेख जफर हसन क्वाड जिला रोहतास बिहार से बोल रहा हूँ सर।
0: जी शेख हुसैन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी तारीफ की इसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया।
1: ना, आवाज देखिए, आवाज जो होनी चाहिए
0: जी
1: जो छत के आ रही है, बहुत हिंदुस्तान प्राइवेट चैनल सरकारी चैनल दोनों में लगाता हूँ।
0: ओके जी,
1: और जी इससे पहले बहुत कॉल लगा चुका हूँ।
0: अच्छा जी,
1: तो आपकी आवाज जो आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, और बोलने का अंदाज भी सर बहुत अच्छा आपका है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, दिल खुश हो गया, दिल खुश कर दिया आपने आज तो मेरी।
1: सर भूल रहे, नाम अपना बता दीजिए।
0: जी मेरा नाम बोके बागरा है।
1: बोके
0: जी
1: बागरा, जी सर।
0: जी
1: तो
0: जी
1: आप तो लगभग 5-6 साल से आपको हम सुनते चले आ रहे
0: ओके, क्या बात है।
1: हैं।
0: जी जी जी जी जानकर बहुत ही अच्छा लगा। और शेख जी, अपने शौक के बारे में बताइए, आप क्या क्या पसंद करते हैं?
1: सबसे पसंद में जैसे क्रिकेट पसंद करता हूँ,
0: अच्छा जी,
1: फुटबॉल पसंद करता हूँ,
0: अरे वाह, क्या बात है जी।
1: और उसके बाद में जो है गाना जैसे मैं गा लेता हूँ उसको पसंद करता हूँ।
0: अच्छा, ओके,
1: जी, और शतरंज खेलता हूँ, शतरंज
0: अच्छा
1: पसंद करता हूँ।
0: जी, वाह वाह, क्या बात है
1: जी
0: जी। तो
1: तो
0: आज आपकी जो फरमाइश होगी वो गाकर ही होगी, गुनगुनाएंगे
1: जैसे है कि आपका
0: जी
1: फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, मोहम्मद रफी ने गाया, शेख सुनाऊंगा आपको, खुश
0: जी
1: कर
0: जी
1: दूंगा।
0: जी जी जी जी
1: देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, शेर भी जो है आपको सुनाकर खुश कर देता हूँ।
0: अच्छा जी, हो जाए, इरशाद इरशाद।
1: एक कतरा ही सही आंखों में पानी तो रहे, ऐ मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। और दूसरा से आखिरी से,
0: जी
1: जब आपकी याद आती है तो आंख में आंसू आ जाते हैं, मगर क्या करें आपकी तस्वीर देखकर मुस्कुरा लेते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब शेख साहब, बहुत ही बढ़िया लगा। जी जी जी ओके,
1: सर कॉल
0: हाँ जी।
1: सोमवार को भी लगा रहे थे, लेकिन होकर कट गया, फिर कोशिश किया नहीं लग
0: ओहो,
1: पाया।
0: ओके जी।
1: जी
0: और इस गीत को किन लोगों के साथ आप सुनना चाहेंगे?
1: तो हमारे लोग भी तो पूरे हिंदुस्तान में लोग भी धूम मचाए हुए हैं, जैसे
0: जी
1: भदरवा जम्मू कश्मीर के पुरुषोत्तम कुमार, अनवर बिहारी और गणेश दास बंगाली।
0: ओके
1: और गाना सुन लीजिए जो पसंद किया है सर,
0: जी, जरूर जरूर।
1: दो लाइन सुन
0: अच्छा
1: लीजिए,
0: अच्छा
1: बहुत
0: हाँ जी,
1: दिनों बाद
0: सुनाइए
1: कॉल
0: जी जी
1: लगा सर,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत
0: जी,
1: दिनों बाद लगा है।
0: और जी, बिल्कुल। हो जाए।
1: देखा है तेरी आँखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार।
0: क्या बात है, क्या बात है, आवाज की दुनिया के बादशाह मोहम्मद रफी जी की वही चुलबुली आवाज, चुलबुली अंदाज आपके आवाज में। जी बहुत ही अच्छा लगा जी शेख जी, आपसे बात करके। जी
1: जी
0: जी
1: बहुत दिनों पर कॉल लगी है सर,
0: जी जी
1: इसीलिए आपको तो
0: ओके,
1: दिल से कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि एक अवसर आपके ईटानगर में आए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शेख साहब।
1: जी
0: तो इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: नमस्कार।
0: ओके नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: सर जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: तो मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ सर।
0: जी जगदीश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा है आपके वहाँ का मौसम अभी जगदीश जी?
1: सर जी, मौसम तो आजकल भीषण गर्मी पड़ रही है पंजाब में,
0: ओके।
1: और घर से निकलना बड़ा दूभर हो गया है। तो सुबह
0: ओके
1: शाम कोई काम है तो वो कर लेते हैं, नहीं तो घर में ही सारा दिन गुजारना पड़ता है।
0: ओके जगदीश सिंह, लेकिन अभी तो देश के कई हिस्सों में बारिश होनी शुरू हो गई है। आपके वहाँ कब तक आने का
1: कह
0: जाए?
1: रहे हैं कि 1-2 दिन में आएगी, पर अभी तो कहीं बादल दिखाई नहीं दे रहे।
0: बादल ही दिखाई नहीं दे रहा। ओके ओके, तब तो बहुत
1: क्या
0: ही
1: पता,
0: मुसीबत है
1: चलो
0: जी। तो
1: उसकी
0: चलिए
1: मर्जी से ही सब कुछ होता है जी।
0: जी, बिल्कुल सही कहा, ऊपर वाले की मर्जी, वो जब चाहे बारिश दे, जब चाहे धूप दे।
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: जी
1: हाँ
0: हाँ
1: जी,
0: जी हाँ जी।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए, घर बैठे रहिए और हमसे बातें कीजिए और सुनिए आपका पसंदीदा गाना कौन सा फिल्म का हो जाए आज?
1: सर आज फिल्म है शहनाई में रफी साहब जी की आवाज में, बड़ा ही प्यारा सा गीत है, रोमानी गीत है।
0: ओके जी
1: तो उसके बोल मैं 2 लाइनें
0: जी जी
1: करंट में
0: जी
1: बताऊं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी।

0: ना झटको जुल्फ से पानी, क्या बात है जगदीश जी। ऐसे ऐसे गाने आप लोग चुन के लाते हैं जिन्हें हमने कभी सुना ही नहीं, और हेलो
1: जी
0: फरमाइश में
1: तो
0: सुनकर और भी बहुत ही अच्छा लगता
1: इतने प्यारे गीत हैं
0: जी।
1: कि ये तो हमारे ये खून में रच बस गए हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है जी जी
1: और
0: जी
1: इनका जो अगर याद भी कर लें तो अभी इन गीतों का आनंद आने लगता।
0: ओके, क्या बात है, क्या बात है। चलिए जरूर
1: जी
0: सुनेंगे आपके साथ इस गीत को। और किन लोगों के साथ आप सुनाना चाहते हैं आप?
1: मेरे मित्र हैं जी, गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन से हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, जोगेश जांगड़े जी हैं, सुनील झा जी हैं, उदयलाल टेलर जी उदयपुर से हैं, और सतीश मिगलानी जी मलोट पंजाब से हैं, गंगा सिंह रावत जी नैनीताल उत्तराखंड।
0: ओके, इन सभी के साथ सुनना चाहते हैं आप इस गीत को।
1: जी सर, जी
0: तो
1: सर,
0: जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना शहनाई फिल्म से।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी। जी योगेश जांगड़े पे मैं सर छत्तीसगढ़ से बोल रहा
0: हूँ। जी योगेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया। अच्छा है।
0: ओके, तो कहिए कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: पहले जैसा ही है भैया, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है।
0: अच्छा, बदलाव हुआ नहीं अभी तक। जी हमारे यहाँ तो लगातार बारिश ही बारिश हो रही है।
1: जी
0: जी तो चलिए कहिए आपका पसंदीदा गाना कौन सा, फिल्म का आज सुनाया जाए?
1: फिल्म है दिल तो पागल है,
0: दिल तो पागल है।
1: और
0: ओके,
1: गीत के बोल है कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना।
0: अब तो कुछ है बोलना। वाह वाह वाह। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के तमाम
0: अच्छा,
1: साथियों के
0: ग्रुप
1: साथ।
0: के सभी साथियों को आप सुनाना चाहते हैं?
1: जी
0: जी तो योगेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब से कुछ ही देर बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के साथ, और आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। हम लौटेंगे 2:30 पर कार्यक्रम हिट ऑफ 90s के साथ।

0: 22nd G7 summit set to begin in French city of Avignon this evening. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांति

0: शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ाने संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए

0: औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार। अब बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, सभा के इस भाग में अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। और हिट ऑफ 90s कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे खुली नंबर वन फिल्म से, मैं तो रस्ते से जा रहा था, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में।

जहां स्टार्न एफ एम 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। दोस्तों 90s का दौर बॉलीवुड का एक ऐसा दौर था जहां हर हीरो की एक अपनी अलग पहचान थी। कोई रोमांस का बादशाह था तो कोई एक्शन का किंग, तो कोई अपनी इंटेंस एक्टिंग के लिए जाना जाता था। लेकिन एक एक्टर ऐसा भी था जो जब स्क्रीन पर आता था तो बस एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होता था। जहां दोस्तों मैं बात कर रही हूँ गोविंदा की। आज जब 90s के सुपरस्टार्स का जिक्र होता है तो अक्सर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सनी देओल और अजय देवगन के नाम सबसे पहले याद आते हैं। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स और ऑडियंस के प्यार की बात की जाए तो गोविंदा की सफलता किसी से कम नहीं थी। कई मायनों में उनकी हिट रेशियो अपने दौर के कई बड़े सितारों से भी बेहतर थी। लेकिन दोस्तों गोविंदा का सफर किसी ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं था। करियर के शुरुआती दिनों में लोग उन्हें एक डांसिंग स्टार के रूप में जाने जाते थे। कुछ तो उन्हें पुअर मैन्स मिथुन चक्रवर्ती यानी गरीबों का मिथुन चक्रवर्ती तक कह देते थे। गोविंदा ने हत्या जैसे फिल्म में अपनी इमोशनल एक्टिंग भी दिखाई लेकिन फिर भी उन्हें वो सुपरस्टार वाला दर्जा नहीं मिल रहा था। उस दौर में उन्होंने संजय दत्त, अनिल कपूर, जितेंद्र, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। लेकिन खास बात यह थी कि स्क्रीन पर वो चाहे कितने बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर क्यों ना किया हो, गोविंदा ने अपनी अलग ही चाप छोड़ी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब गोविंदा ने कुछ ही दिनों में 30 से ज्यादा फिल्में साइन कर ली। 3-3 शिफ्ट्स में काम करना जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।

चार सालों में लगभग 50 फिल्में कर देना आज भी एक रिकॉर्ड जैसा लगता है। इस मेहनत ने उन्हें कंप्लीट एक्टर की पहचान दी और लोग उनकी तुलना धर्मेंद्र जैसे ऑलराउंड एंटरटेनर से करने लगे। दोस्तों, मैं गोविंदा के बारे में और भी आपको जानकारी दूंगी, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं उन्हीं के फिल्म का ये गाना सोना कितना सोना है, उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में, और फिल्म है हीरो नंबर 1।

दोस्तों, जैसे इंटरवल के बाद असली कहानी शुरू होती है, वैसे ही हर सुपरस्टार की जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आती है। और गोविंदा के लिए वो टर्निंग पॉइंट था डेविड धवन। शोला और शबनम से शुरू हुई ये जोड़ी धीरे धीरे बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स में से एक बन गई। और फिर आया आंखें फिल्म सिर्फ एक सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं था। इस फिल्म ने गोविंदा के स्टारडम पर लगने वाले सारे सवालों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद तो जैसे हिट फिल्मों की बारिश शुरू हो गई। राजा बाबू, कोली नंबर वन, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर वन, दीवाना मस्ताना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और दुल्हे राजा। आज भी जब हम इन फिल्मों के नाम सुनते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गोविंदा और डेविड धवन की जोड़ी ने कॉमेडी को एक नया रंग दिया। उनकी फिल्में लॉजिक से नहीं, एंटरटेनमेंट से चलती थी और ऑडियंस को वही पसंद आता था। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है गोविंदा के कुछ यादगार और सुपरहिट गानों का। सुनते हैं अगला गाना, व्हाट इज मोबाइल नंबर, हसीना मान जाएगी फिल्म से। इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాక్స్ టచ్.

दूसरे से के साथ ही हिट अप 90s कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी टनगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। उसके तुरंत बाद 3 बजे आप सुन पाएंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। दोस्तों हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।

0: This is Nara Goya. Today's headlines are: Prime Minister Narendra Modi hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia. Both leaders met at the Bratislava castle for the bilateral engagement. World leaders welcome peace deal announced between United States and Iran, describes it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. The 52nd G7 summit begins today in France amid a significant positive development in West Asia. President Drupadi Murmu and Vice President CP Radhakrishnan expressed grief over the loss of lives in an accident in Solapur, rural Maharashtra. Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan calls on Vice President Radhakrishnan at Up Rashtrapati Bhavan today. Ministry of Ayush hosts curtain raiser for the 12th International Day of Yoga in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi to lead the main event at Red Road in Kolkata. INS Sharda successfully concludes its visit to Colombo, Sri Lanka. The Ministry of Defense says that the visit further strengthened maritime cooperation and friendship between India and Sri Lanka. Arunachali artists Rumi Taki and Domin Karbak honored by Sangeet Natak Academy. Rumi Taki received the Ustad Bismillah Khan Yuva Purashkar, meanwhile Domin Karbak received the Sangeet Natak Academy Award. All 14 Indian crew members from the Indian flag mechanized sailing vessel Virat 1 rescued. The vessel has suffered an engine failure off the coast of Oman. National Testing Agency releases admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education. The candidates can download their admit cards from NTA's official website. In ICC Women's T20 World Cup, India defeats Pakistan by 64 runs in a Group A cricket match. That's all in this news headlines. Namaskar.
1: Anja akaswani itanagal to yasila se la katari kya moklen samna law hingin tal moktam to phabajik samna kaman king lai kong song pho la ke proben sam epong dangin pha lai kong song khrai ming satka gya chi ora prime minister narendra modi on slovak hai bi miro robert fico phailai chuk ta mangna da da bratislava slovakia capital dongin bi one slovak president peter pellegrini ne phut mangna khrai thau man ra ka minister modi ka thau ka an one indiana slovakia relation kandang do trai ta exit opportunity ta thau tha ka We social media post helam ka PM Modi ka Slovak President Peter Pellegrini na Prime Minister Robert Fico phailai chuding duk tang thar me sal mana tha tha ka an pangwai President Robert Murmu na state visit kan ka da khai tha Slovakia he thamit lai tarik lau hingin tal mok len da ra ka Slovak President Peter Pellegrini na India ho ka da khai tha AI impact summit lak kandi lai lau hingin tal mok tam rat Raka an visit one defile Slovakia na India for trade, investment, automobile, Raka, railway manufacturing, or taxes among the Dadla. Raka Arunachali artist Rumi Taki na Domin Kabak with Sangeet Natak Academy owner kan gata da khai tha oman. Siam Pema Khando ka vi naikin sabi congratulate kan gata khai tha oman. Raka vi social media post hai lam ka Khando ka khai tha ka Rumi Taki vi one Ustad Bismillah Khan Yuva Puruskar than ka dakhay tha ka vi one folk theater nang traditional folk dance he taxed contribution kan hi. Ra ka Domin Karbak vi one Sangeet Natak Academy Award than ka dakhay tha umun. Vi one no culture heritage nang indigenous tradition of Arunachal Pradesh for ring preservation nang promotion he kam kar man hi. Ra ka Minister for PHC and Water Supply Mama Natung one Ramakrishna Mission Hospital lag thega da khae tha umle ti makro wan dam le to thong hi ora ka vi minister ka authorities nang ora ka PHC official ora ka water department supply department chong sa phai lai chuk ta ka da khae tha um wan sa ka ti wan dam support ka ne samang da thau tha ka ora ka water tanker na than te phit samang da khae tha ka ora ka vi ka PHC nang water supply department chong san wiksat ka thong na ka kapat khat solution to lai thau ka da khae tha um Raka Special Intensive Division Law Higgin Talmok Tamwan Dam He Boot Level Officers Nang Bielo Supervisors Kang Training Thakat of the Khai Thaum Balijan Lang Sagali Papum Pare District Lag Balijan Lag 14 Doimok Assembly Constituency Fa Bielo Nang Bielo Supervisors Kang Kan Kat of the Walang ADC Ka ERO 14 Doimok Assembly Constituency Fa Takar Rawa Ka Eligible Voters Sanwik Tasan Raka Ineligible Sanwik Sitka Thong Nang Atawal Da Thao Thaka वनसा रो प्रोग्राम कोमो सगाली लक नै कन गदा दा खाय थाउन 15 सगाली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बेल लो सनफा रेकन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नीट यूजी एग्जामिनेशन फॉर एडमिट कार्ड रिलीज कन गदा खाय थाउमन कैंडिडेट सनवन एडमिट कार्ड ऑन एनटीए फॉर ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in है डाउनलोड कर चुन मन रखाय थाउमन एग्जाम मन अनलाइन तारीख तलमकमो लेकर राजमंग दा बजी किन ने का बजी क्लाइंट का मिनट क्या मुक्लाइंट मो रखा एनटीए का कैंडिडेट सन भी बैंक अकाउंट वेरीफाइड कर दा था था का विन वेरीफाइड थान ही रखा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पिनाइम जा वहाँ शो इसे इंस्ट्रक्शन पिनाइम सन फॉलो कर दा था का रखा वर्ल्ड ब्लड डे इन द ब्लड सेंटर ग्याटी तका जोनल जनरल हॉस्पिटल 01 सीआरसी हापोली योजना रोने का वोलिन तेरी ब्लड डोनेशन कैंप का कनिंग दिखाया था उमन अन ग्राम फसलो गन वन वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमिनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ दिखाया था उमन रकम जाम ने चंबू रखे मोकलेन यूनिट वी कलेक्शन का तो दिखाया था उमन रक आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप लग इंडिया का पाकिस्तान भी कंदामो कमरन रन का पे का तो दिखाया था ग्रुप ए लग एक्स बेस्टन बिर्मिंगम लग इंडिया का चंबू रत वजय मकनो मकमो टारगेट था का तो दिखाया था पाकिस्तान वन वजय मुक्ताम रन त्राने का ओवर कैप मुन लग चंबू आवो छम दो दिखाया था रक इंडिया वन बेट तक पंग इन का तो दिखाया था रक इंडिया वन कनो वजय मकनो मो टारगेट था का तो दिखाया था चंबू रत ओवर तर मो खिली ने का रक श्रीमती मंदना वन हाईएस्ट स्कोर कन का दकना मो ग्रिन त्राने का बीसी मकमन बॉल लग इंडियन फर्स्ट कीपर हरमनप्रीत कौर वन बेतन इन का दिखाया था उमरा का दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच थान का था उमरा का टूर्नामेंट वन इंग्लैंड नंग वेल्स खिलीम ना दिखाया था उमन फाइनल वन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लग कमोला तारीख के मुकले ना खिली माता उदा उरा का अंसाउम लग मान किंग लाइकों सौ फाइमन तो कलोंग दला तारोंग लुमान का जेक्शन पुल दाय कैप वन गया जाए

0: दाइखांती श्रोताओं का कार्यक्रम अब बनवी हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से,
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

The सब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड अपडेट। और सबसे पहले बात करते हैं मैं वापस आऊंगा फिल्म के। ये फिल्म 12 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि यादों, बिछड़ने के दर्द और अपनी पहचान के तलाश की कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के पार्टीशन के दौर से जुड़ी हुई है, जहां एक परिवार और कुछ रिश्ते सियासी हालत के बीच बिखर जाते हैं। दिलजीत दोसांझ और शर्बरी की केमिस्ट्री को ऑडियंस पसंद कर रहे हैं, जबकि नसीरुद्दीन शाह अपनी गहरी और इमोशनल परफॉर्मेंस से फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है और उनके कम्पोजिशंस कहानी के इमोशंस को और भी गहरा बना देते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म अपनी स्टोरी टेलिंग और इमोशनल क्लाइमेक्स की वजह से याद की जाती है। हालांकि कुछ दर्शकों को इसका स्लो पेस कुछ दर्शकों को इस फिल्म का स्लो पेस थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन ओवरऑल ऑडियंस इसे एक सोलफुल और हार्ट टचिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बता रही है। दोस्तों, 12 जून को एक और फिल्म रिलीज हो चुकी है, गवर्नर। यह फिल्म एक पॉलिटिकल फाइनेंशियल थ्रिलर है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी एक ऐसे आरबीआई गवर्नर का किरदार निभा रहे हैं, जो देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में मुश्किल फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाता है। फिल्म हमें उस समय में ले जाता है जब भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही थी और फैसले देश का भविष्य बदल सकते थे। मनोज बाजपेयी ने एक बार फिर साबित किया है कि इंटेंस और रियलिस्टिक रोल्स में उनका कोई जवाब नहीं है। फिल्म में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और पावर कॉरिडोर्स की कहानी को काफी रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया गया है। रिव्यूज में खासकर मनोज बाजपेयी की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि फिल्म कई जगह थोड़ी ज्यादा टेक्निकल हो जाती है, लेकिन जो लोग रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज और इंटेलिजेंट सिनेमा देखना पसंद करते हैं, उनके लिए गवर्नर एक एंगेजिंग वॉच साबित हो सकती है।

तो दोस्तों, एक तरफ है प्यार, जुदाई और यादों से भरी इमोशनल कहानी मैं वापस आऊंगा, और दूसरी तरफ देश के इतिहास के एक अहम दौर को दिखाती है गवर्नर। दोनों फिल्में अलग अलग जोनरा की है, लेकिन दोनों की अपनी कहानी और परफॉर्मेंसेस के दम पर दर्शकों का ध्यान खींच रही है। और दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाली फिल्मों की। तो अगले इस हफ्ते 19 जून को रिलीज हो रही है इस साल के सबसे चर्चित रोमांटिक ड्रामास में से एक कॉकटेल 2। ये फिल्म 2012 की सुपरहिट कॉकटेल फिल्म की स्पिरिचुअल सीक्वल मानी जा रही है, लेकिन कहानी और कैरेक्टर्स पूरी तरह नए हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है होमी अदाजानिया ने, और लीड रोल्स में नजर आएंगे शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना। इस बार कहानी मॉडर्न रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, अट्रैक्शन और इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस के 8

गीत घूमती है। ट्रेलर और गानों को देखकर लगता है कि फिल्म में रोमांस के साथ ग्लैमर, ड्रामा और हार्ट ब्रेक का भी जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। म्यूजिक प्रीतम ने कंपोज किया है और सॉन्ग्स पहले ही सोशल मीडिया पर अच्छा बज क्रिएट कर चुके हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियां बतौर रही है, एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और यूथ ऑडियंस में इसका एक्साइटमेंट काफी हाई नजर आ रही है। हाल ही में फिल्म को CBFC से ए सर्टिफिकेट मिला है, जिसने लोगों को क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि शाहिद, कृति और रश्मिका की पेयरिंग फिल्म की सबसे बड़ी USP हो सकती है। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस मिक्स्ड लेकिन इंटरेस्टिंग रही। कुछ फैंस इस फ्रेश कास्ट को लेकर काफी एक्साइटेड है, जबकि कुछ लोग ओरिजिनल कॉकटेल के आइकॉनिक कास्ट से कंपेरिजन भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि रिलीज से पहले ही कॉकटेल 2 ने ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।

दोस्तों बॉलीवुड अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं तो दिल धमाल फिल्म का पैसा ये पैसा, इस गीत को गाया है। देव नेगी, सौरभ गांगुली और अर्पिता चक्रवर्ती ने।

0: इसी के साथ ही दोस्तों हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और बॉलीवुड अपडेट कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे ईद मिश्मी श्रोताओं का समाचार। माफ कीजिएगा दोस्तों, आप सुन पाएंगे 1-2 श्रोताओं का समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि जून लेट मानी बनागा तारीख हमबार इरुमा केम वांचो चाय का हवांग वांगना हवांगे का हो पाई फाले मंचुई जामी खमे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनि स्लोवाकिया कैपिटल ब्रिटिस्लावा होनुईमा स्लोवाक टोके चीनिंग के रॉबर्ट फिको पाई अपोंगले ngorong rang वनांग बोमा स्लोवाक प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी पाईचू अपोंगाई Mr. Modi e chi hale ka ke India Slovakia relations han pak ma motto hai hu ke bo ma des ni ba ma bon ran saran buto chu tamok tam sa ai le hole hale social media ma PM Modi e chi mong yang ma Slovakia's president Peter Pellegrini he ya prime minister Robert Fico ni phai apong le arong ke ma pangnu mot wei na yat hai le te te pul hole 1993 ma independence cup ke phai ma Slovakia to Indian prime minister haleka ke pongwang le kachang le PM Modi hale Slovakia to April 2025 ma president Draupadi Murmu ka ke boma February 2026 ma AI impact summit ma India to Slovak president Peter Pellegrini chu wang to ka phai ma ka kachang le हाले इंडिया स्लोवाकिया नॉक पाई थाले वनटाई इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल बोमा रेलवे सतमोट ले ओमला ले माली माली मोटो तमक तमसा करोंग मा ले का के चंगले अरुणाचली साइपा का पा रूमी टाकी हिया डोमिन कारबाक नी आंग संगीत नाटक एकेडमी ची मखांगे मनचोंग हिंगो बुको के खोमा चेप मनसा पेमा खांडू ए हया नी तो हाले कप का माई पुल फुमले सोशल मीडिया मा खांडू ए हले रूमी टाकी ए फोक थेटर या टिंखो खा शोन पठान पंक मा ले उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवक पुरस्कार अंतोले डोमिन कारबाक के कल्चरल हेरिटेज फन अमई कबोमा अरुणाचल प्रदेश मा टिंखो खा टू चेन वन लम अली कफन ले थमंग मोक कहान पंक मा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ले कप कचंगा ले होले पीएचई एंड वाटर सप्लाई मिनिस्टर मामान नातुंग टी मटुई के टुईटर पर टिकांग ले मनी रामकृष्ण मिशन हिंगम तो नुले हायम मिनिस्टर ए हाया हिंगम मा हले टीमा टुई के ट्विटर बामा मिशन अथॉरिटीज बोमा पीएचई ही वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स थंपाइले अरों के बोमा हाया हन पकमा खत ले जो हुमे ए ले गाइले नाटुंगे हखा मा हाया हिंगम मा पोंगपन मा ला तो नंग ना मै को आंग टी गारी वाटर टैंक मखंग ए पोले को ए लेवन के बोमा पीएचई ही या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट आंग हाले ती में तुई के तुई ताए सनलो थान पक मा जो नाप में को आंग बले मोको ले मै हे ले पंगनु टिकटो हे ले तमले हायंग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR 2026 हान पक मा आचोना थाक रोंग मा ले पापुं परे डिस्ट्रिक्ट खा मा बाली जान बोमा सागाली मा ले ब्लॉक तंपाय बोर्ड लेवल ऑफिसर्स BLOs अंतोले BLO supervisors buhan pakma le offline training program angot le Balijan ma haya training 14 doimuk assembly consensi kha angke BLO siap BLO supervisors bu le om le haya tu so okam ke ma 14 doimuk assembly consensi kha angke Balijan ADC bo ma ERO chu chang ke Takar Rawa e re to bandau ke voters bu man pangwai apat ke bo ma e to ma hai ke บูมันมีรัฐวัตังกหมดเลยคันละวันเลยเชียออฟฟิเชียลบูไปอิเล็กทรอนิกส์รอลรีวิชันสัตว์หมดต่อเจ้าท่าละไม่เลยมกใครดีจวักเลยฮาลาไวฮาลาเกตเทรนนิ่งโปรแกรม15สากลีแอสเซมบลีคอนเซนซีคาอังเก้บีเอลอสบูหันปักมาสากลีมจูอังอดเลยฮันเรเมอาคาชวานีอิตาเนกรมขังกับพักกับข้าวปังอเล National Testing Agency e Undergraduate Medical Education Admission Hanpakma NEET UG Re-examination Ten Admit Cards Bu Ringdawa Candidates Bu Ma Admit Cards NEET.NTA.NIC.IN Leke NTA's Official Website Toka Laile La Chokai Haya Porikya Iyalet Chata To Chamtu Ani Bajim Khange Aga Baji Banga Minutes Pongkap Langotai Hapai tamle NTA candidates bu hato admit card lai thoma

0: mun achat se leke kapang kahan pang ma bank account bu bama maile kyak tole kabak hai le hole World Blood Donor Day chen male zero to ke gyati taka general hospital anke blood center e mani thamcha rok leke crc hapole yot hotam phai asam la le one drop of humanity give blood save life leke chawannu anke campaign slogan khama voluntary blood donation kem atu jale aji banga vital unit jo kaple haboma icc women's t20 world cup ma birmingham toke edward stone honui ma apan ke group a cricket match ma pakistan to india e puram ali runs makanga thakle le hale pakistan thoma pile india e puram hota puram ban atar runs target ring le tok tu to pakistan e banana overs bama hota arok runs lan lan wai ring chok le pong wang wai pitai le pan le india e cha overs bama pangnu hota puram ban ring chang ke ha kha ma puni ali deliveries bama akole shrim Smriti Mandhana e Puram Achat Rans Ringle Hayathoma Indian Skipper Harmanpreet Kaur e Toss Lat Lat Le Hovangwai Phitai Le Phan Le Arab Abau Kuchangke Player of the Match Manchong Dipti Sharma Kap Le Le Jang Tuta Tournament Hale England Heya Wales Nima Atu Jalango Ke Final July Agato Lords Cricket Ground Ma Atu Jale Akeng Le Pandawa Anika Ka Ho Iwai ija akashwani itanagar debrugar ka hophema chai pahai hobange ngamhwa johamding ma pahai
1: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार. साथ ही बता दूं दोस्तों, अगर आप वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मिधुमेह 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं. आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात. दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स. तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, क्यों हो गया ना फिल्म से आओ ना. इस गीत को गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने.

दोस्तों इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम ही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। दोस्तों आपसे कुछ ही देर बाद यानी ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे ईदू मिश्र में श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी दिल उदास सा लगता है, लेकिन हर मुश्किल के बाद खुशियों की एक नई किरण जरूर आती है। और इसी खूबसूरत एहसास को बहुत ही प्यारे अंदाज में बयां करता है तू जाने तो या जाने ना फिल्म का गाना कभी कभी आदित्य। तो चलिए सुनते हैं राशिद अली की आवाज में और AR रहमान के संगीत से सजाया हुआ ये खूबसूरत गाना कभी कभी आदित्य। और इसी के साथ ही हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Over.
1: Please.

दोस्तों इस गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम ही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे थांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आप पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा अजपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार। जाते जाते बता दूं दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपकी अपनी RJ मंजू। तो दोस्तों, आप मुझे यानी आपके रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात।

फिर आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मजूसा डुबा शशि सोम जुनजिलिंग रंगसर बंगा तारीख पांग हजनेरा क्रक्रक पांग आरो रंगजा बलैबी खुमिनी थोड़ा मसो तंगसा प्रोग्राम तफंग राय मचू रंगजा रुंगरंग रो क्वांग कौन का मामाई रो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रो मचूसा स्लोवाकिया कैपिटल ब्रिटिश लावा हा नंग स्लोवाकिया प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको जम रफांची हाइम स्लोवाकिया प्रेसिडेंट पीटर पेलिग्रेनी जम डॉ रामची प्राइम मिनिस्टर मोदी रंगो आपीर स्लोवाकिया मुंग राय करो मुंग नई तुंग नंग रोहम प

tachen linchi nangma aro mungnai tungnang ro ma anya lamlu takhong chingo phanta prime minister rungo apiro slovakia president peter pellegrini jammani slovakia prime minister robert fico jamma ahum rafanching woro social media post nang phanta slovakia mungro pang sat kaura thosarum pangnang sadin lapta haima indian prime minister ra slovakia mungpa afang lagrai kar ir kachai nang nangmung president dropadi murmu ra pang hajanira khramnga pangnang april jeling nang slovakia mungpa raikata haima slovakia president peter pellegrini ra Machupang February jeling nang India nang AI summit meeting nang kachuma India nang ratung orota President Pellegrini po India nang rat praju India ro Slovakia mung jamma pailai kaunang nai investment kaunang ra parma automobiles man kaunang nai railway man kaunang rom po seheng linma rota संगीत नाटक एकेडमी र अरुणाचल प्रदेश वंग सौताई साइताई मई रोमी ताकी मनई डोमिन कार्बाक म एवार्ड प कुखा म अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र पन्नई म रंतहत रोमी ताकी र फोक थेटर मनई ट्रेडिशनल फोक डांस म काम सोम खा म ओस्ताद बिस्मिला खान युवा पुरस्कार एवार्ड पर लाप्तो पर म डोमिन कार्बाक फांगलांग अरुणाचल प्रदेश वंग आकिंग थुंगलाई ताम पर वोंकांग म काउनांग काम सोम खा म संगीत नाटक एकेडमी एवार्ड पर लाप्तो मुरौ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र सोशल मीडिया पोस्ट नांग फांत ईटानगर वंग रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल नांग खाम म थु थोम रौ हॉस्पिटल वनम हान कमुंग रफानचेन मंग वरो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नई वाटर सप्लाई मिनिस्टर मामा नातुंग पमनेसा रामाकृष्ण हॉस्पिटल नंग कातु प्रजु रामाकृष्ण मिशन वंग ऑथोरिटीज मेहेंग जाम नई परम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग नई वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वंग ऑफिशियल्स मेहेंग जाम रफान तनंग खाम प राय कुचिंग वरो तो परिजु मामा नातुंग रंगो हॉस्पिटल वनम मचौ रार राम खाम टेंकर कुची मोरो त आरो खाम प आलिंग कुरंग म मोरो चम जार प नरी म रायरंग मोरो मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर पी एच ई ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट म रो त थोवाने छि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एस आई आर म मोरो कचु पाइरो बूथ लेवल ऑफिसर्स बी एल ओस हेंग म नै बी एल ओ सुपरवाइजर्स हेंग म मोरो ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम पर पपमपरे डिस्ट्रिक्ट जखुंगवांग बालिजान हानंग नई सागली हानंग तथुंग बालिजान हानंग ट्रेनिंग तथुंग नंग 14 दोईमुंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वांग बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ हेंग नई बीएलओ सुपरवाइजर्स हेंग थोक तो परजु दोईमुंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एडीसी बालिजान कम ईआरओ ताकर रावार मसौ फांत नंग फील्ड वेरिफिकेशन काउलाम म इन एलिजिबल वोटर मई एंट्री प काति रंग म एलिजिबल वोटर्स मई मंग प वैरंग आरियंग रार मुरो त पर म इलेक्ट्रल रोल रिविजन प्रोसेस काम नंग ट्रांसपेरेंसी जांगरंग मुरो डॉप एडीसी र ऑफिसर्स मई हे मरो त पर तुम नंग 15 सागली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जखुंगवांग बीएलओस हेमन मुरो ऑफलाइन ट्रेनिंग पर सागली हानंग तथुंग तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए र अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन नंग एडमिशन मंग वरो नीट यूजी री एग्जामिनेशन म एडमिट कार्ड पर कुतसो अरो कैंडिडेट्स हेंग र मामा एडमिट कार्ड पर एनटीए वन ऑफिशियल वेबसाइट जंग र नीट डॉट एनटीए डॉट नीट डॉट इन वंग डाउनलोड कुरी रक्षिंग रोकत नीट यूजी री एग्जामिनेशन पर मचौलिंग रंगख्रासी तरीक्षा रंगजा कौ अनई बजी म अरो रंगजा बंगा बजी रा सर बंगा मिनिस अतक तथुंग छि कैंडिडेट सेंग र एडमिट कार्ड पर डाउनलोड कुरी है मु कछे है नंग रिफंड रंग तान मंग रो मामा बैंक अकाउंट डिटेल्स पर वेरीफाई कुरी रंग अछि मु रो एनटीए र कैंडिडेट सेंग म रोखेप त परजु कैंडिडेट सेंग र इंस्ट्रक्शन अरप नरीम रायरंग मोरो डॉप
एन्टिएरो किनिदे सेमो रोग तो जीरो हावंग गेती तकर जोनल हॉस्पिटल र मनेसा वोल ब्लड डोनर डे सकान प सरेंग मंग रो सीआरसी हापुली युद जम कशु रो मचुपांग ग्लोबल कैंपेन स्लोगन अर वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइफ जखुंगनांग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप तथुंग प्रजु ब्लड प 15 वाइटल यूनिट्स लाप्तुंग रोग मनेरंग जा बिर्मिंगहम हानंग इबर्सन स्टेडियम नंग आईसीसी वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए मैच नंग इंडिया टीम ने पाकिस्तान टीम तुंग नंग तो प्रजु इंडिया र 64 रन्स म चैत इंडिया र कचाई बुकरौ पाकिस्तान म टारगेट प 171 रन्स नुंग तुम पाकिस्तान र 17 ओवर्स नंग 106 रन्स दै मानरग्रौ वडो खिलाड़ी आउट कयांगोन त इंडिया र 20 ओवर्स खिली तनंग स्मृति मंदना र 44 बॉल्स वंग 68 रन्स मानत प्रम दीप्ति शर्मा र 10 रन्स पुरौ 5 विकेट्स लामखा म प्लेयर ऑफ द मैच लाप्त जिलिंग सिरांग म टूर्नामेंट खेल प इंग्लैंड नंग नई वेल्स नंग तोरवंग फाइनल खेल प जुलाई लिंग रामगा तारीख सा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड नंग जंगछी रुंगरंग इटाना थुमरा।

नमस्कार दोस्तों, तांसा डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूं अरुण एफएम प्रसारण सभा में एक बार फिर से आप सभी का। और हां, थैंक यू सो मच पूरा दुनिया जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूं कि ये शाम बहुत सुहाना बीते आपका। श्रोता स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:28 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, अकड़ तो हर इंसान में होती है, फिर भी झुकता वही है जिसे अपने रिश्तों की फिक्र होती है। जी हाँ दोस्तों, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, कभी झुकना भी पड़े तो भी झुकेगा, क्योंकि अपना परिवार अपना ही होता है और हमेशा हर मुश्किल में हर समय में आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा रहेगा। चलिए दोस्तों, मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए ये भी बताऊंगी आपको कि इस वक्त बताना चाहूंगी आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो। आयुश्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे आपके साथ। दोस्तों आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसे लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी छुपी हुई है। आइए ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानकारी दे आपको। सबसे पहले दोस्तों, हमारे समाज में कई ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन्हें लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं, जैसे कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, आपने घरों में भी देखा आपने देखा ही होगा कि शाम को हम झाड़ू लगाने से मना करते हैं, या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, और शाम को अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो लक्ष्मी चली जाती है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है। पहले के समय में दोस्तों ऐसा था कि बिजली नहीं हुआ करती थी, अंधेरे में झाड़ू लगाने से घर की कुछ जरूरी चीजें जो है वो बाहर चली जाया करती थी, यानी कि अंधेरे में झाड़ू लगाने की वजह से। और उस जमाने में लालटेन या कम रोशनी वाली चीजें ही हुआ करती थी, क्योंकि बिजली तो थी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों उस जमाने से ये चला आ रहा है कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो ये बात आते आते आज ये बन गई है कि शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है। पर एक्चुअल रीजन ये था कि शाम को झाड़ू लगाने से बिजली ना होने के कारण घर की कुछ जरूरी चीजें भी कभी कभी बाहर फेंकी जाती थी। और फिर दोस्तों एक कारण ये भी है, और दूसरा ये भी है कि कहा जाता है कि शाम को नाखून नहीं काटनी चाहिए। वेल, ये बात सही है कि शाम को नाखून नहीं काटनी चाहिए, पर इसमें कुछ अशुभ या शुभ कुछ नहीं है। यही इसमें भी यही बात बैठती है दोस्तों कि पहले बिजली नहीं होती थी और कम रोशनी में नाखून काटने से चोट लगने का खतरा हुआ करता था। यही कारण था कि शाम को नाखून नहीं काटने दिया जाता था। और साथ ही साथ बाल काटने की भी बात होती है, तो यही बात है कि शाम को बाल नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि उस जमाने में रोशनी नहीं हुआ करती थी। और फिर बैठकर पानी पीना चाहिए, अक्सर ये कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि बैठकर पानी पीना चाहिए। बैठकर पानी पीने से शरीर पानी को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर पाता है और पाचन तंत्र पर काम दबाव पड़ता है। इससे आपका पाचन तंत्र सही होता है। वहीं जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो इसे शरीर अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। और फिर दोस्तों जमीन पर भोजन बैठकर खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसके पीछे भी ये बात है दोस्तों कि जिस पोस्चर में आप बैठकर खाना खाते हैं या खाते थे जमीन पर पहले जमाने में, उस समय पाचन जो सही रहता है, उससे डाइजेशन भी सही होता था। कारण यही था। और फिर कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि किसी शुभ कार्य को करने से पहले दही और चीनी खानी चाहिए, ऐसा कहा जाता था। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि दही शरीर को ठंडक और ऊर्जा देती है और चीनी तुरंत ग्लूकोज प्रदान करती है। इससे शरीर ऊर्जावान रहता है, यानी कि आप जिस काम के लिए गए हैं उस काम के लिए आपका शरीर एनर्जी से भरपूर रहता है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें बताएंगे आपको आज इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, ओ माई गॉड 2 फिल्म से।

श्रोता, आपने आनंद लिया इस गीत का हरिवंश रघुवंशी की आवाज में ओ माय गॉड टू फिल्म से। और दोस्तों, कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम यानी कि गुड इवनिंग ईटानगर में हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन हाँ, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन छुपे हैं। जैसे कि दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। रात में पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत होते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन असल में बात यह है दोस्तों कि रात में पेड़ यानी कि पीपल के पेड़ और भी बड़े पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज किया जाता है, जिससे अधिक देर तक रहने पर घुटन सा महसूस होता है, खासतौर पर पीपल के पेड़ के नीचे। तो यही कारण है दोस्तों कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं जाने की सलाह दी जाती थी। इसके पीछे कोई भूत प्रेत वाली बात है ही नहीं। और फिर दोस्तों, मंदिर में घंटी बजाना, मंदिर प्रवेश करने से पहले घंटी क्यों बजाया जाता है? परंपरा तो ये कहती है दोस्तों कि मंदिर में प्रवेश से पहले घंटी बजाई जाती है ताकि भगवान को जागृत कर सके, ऐसा कहा जाता है। पर बात ऐसी बात है दोस्तों कि जब हम घंटी बजाते हैं तो घंटी की ध्वनि से ध्यान केंद्रित होता है, मन शांत होता है और पॉजिटिव ऊर्जा का अनुभव होता है। और शायद आपने ये भी देखा होगा कि कहीं दुकान के बाहर या फिर घरों के बाहर नींबू मिर्ची लटकाया जाता है, तो इसके पीछे का सच क्या है? दरअसल दोस्तों, इसे लटकाने पर लोग कहते हैं कि ये बुरी नजर से बचाती है, लेकिन इसके पीछे के कारण ये है दोस्तों कि नींबू और मिर्ची में एक बहुत ही स्ट्रांग स्मेल होता है। इसके तेज गंध और कुछ प्राकृतिक तत्व ऐसे होते हैं जिससे कीड़े मकोड़े या मक्खियां दूर रहते हैं। और खास तौर पर इसे लटकाया जाता है दुकानों और भोजन रखने वाली जगहों पर ताकि ये कीड़े मकोड़े दूर रहे। यही कारण है दोस्तों। और

भी अन्य कारण होंगे, पर जितना समझ में आया उतना मैंने बताया आपको। तो इस तरह की बातें हैं जिन्हें हम अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन फिर भी इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक रीजन छुपा होता है। फिलहाल चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का।

0: Şu da apne Anand liye is geet ka anjani anjana anjani film se Rahat Fateh Ali Khan ki awaaz mein aur isi geet ke saath hi aapko batana chahenge ki karyakram Good Evening Itanagar ka aaj ka ye ank yahi par samapt hota hai. Kal hum lekar aayenge ek aur naya ank kuch aur mazedar baaton aur geeton ke saath. Filhal aapko batana chahenge ki ab se thodi hi der baad aap sun sakenge Akashwani ke Itanagar kendra se Hindi aur Angrezi mein samachar jiske turant baad aap sun sakenge Nokte Dialect News aur theek Nokte Dialect News ek baar Now, Nokte Direct News के बाद हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ.
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है. अब आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ बातचीत. 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज फ्रांस के एवियन शहर में. प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे. अरुणाचल प्रदेश के कलाकार रोमी ताकू और डोमिनिक कारोपा को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया. आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारियों के तहत अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के बालीजान और सगाली में ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित. भारत में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के स्वागत किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली होगी. अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट. ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया. और फीफा विश्व कप में आज स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के साथ बातचीत की. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया. श्री मोदी ने कहा कि ये भारत तथा स्लोवाकिया की यात्रा को संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है. ब्रासिल्वा पहुंचने से पहले श्री मोदी को गर्मजोशी से स्वागत किया गया. और ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया. प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी. प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा. स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे.
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे. भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है.
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं. इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है. इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे. उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे. अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस.
1: अरुणाचल प्रदेश के कलाकार रोमी ताकू और डोमिन कारबाक को संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है. इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दोनों कलाकारों को बधाई दी है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि रोमी ताकू को लोक रंगमंच और पारंपरिक लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है. वहीं डोमिन कारबाक को अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और समृद्धि में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 के तैयारियों के तहत पापुमपारे जिले के बालीजान और सागाली में बूथ स्तरीय अधिकारियों BLO तथा BLO सुपरवाइजर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बालीजान में आयोजित प्रशिक्षण में 14 तोयमुख विधानसभा क्षेत्र के BLO तथा BLO सुपरवाइजर द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर बालीजान ADC सह 14 तोयमुख विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ERO तकार रावा ने सभी पात्र मतदाताओं को नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा उचित क्षेत्रीय सत्यापन के माध्यम से अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में सटीकता और पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया। वहीं 15 सागाली विधानसभा क्षेत्र के BLO के लिए सागाली में BC प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष में विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते से कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 100 दिन तक जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता किया गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलदमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 6 से 7 दिन तक अत्यधिक तेज वर्षा का आशंका व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र में अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के कुछ भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और दक्षिण छत्तीसगढ़ के सक्रिय हो जाने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों तवांग, शियोमी, दिवांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य शहरों और सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों का घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। ब्रिटेन में 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वे सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो बेडो के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। सुरेन ने आज मेक्सिको के मोंटेरिना स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की है। मिचेल स्टारबक ने 88वें मिनट में पांचवा गोल दागा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा है कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नारंग कोयांग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज करेंटली होल्डिंग टॉक्स विथ हिज स्लोवा काउंटर पार्ट रॉबर्ट फिको इन ब्रातिस्लावा द कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया। बोथ द लीडर्स मेट एट द ब्रातिस्लावा कैसल फॉर द बायलैटरल एंगेजमेंट। Earlier, Prime Minister Modi was accorded a guard of honor in presence of his Slava counterpart, Robert Fico. Mr. Modi said this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993.

नमस्कार दोस्तों, नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

दोस्तों आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और पहला गीत आपने सुना तमाशा फिल्म से, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को पीके फिल्म से, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में।

तो दोस्तों बता दूं आपको कि अंधाधुन फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मनोरंजन का सिलसिला रुकेगा नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर।

श्रोता दिल क्या करे फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

तो श्रोता, बताना चाहूंगी आपको कि पहला गीत आपने सुना अमित त्रिवेदी की आवाज में केदारनाथ फिल्म से। और बता दूं आपको कि आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोता, घनचक्कर फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायरेक्ट न्यूज। तो चलिए श्रोता, मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का।

कार्यक्रम आज के कलाकार में श्रोता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमेशा की तरह मजेदार गीतों का आनंद जरूर लेंगे हम इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ एक ऐसे कलाकार के बारे में, एक ऐसे अदाकारा के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप सभी बहुत पसंद करते हैं, बेबो के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बेबो के नाम से मशहूर कपूर खानदान की करीना कपूर के बारे में बात करेंगे। करीना कपूर ने बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया है। अपनी फिल्मी करियर के दौरान करीना ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड और अनेक पुरस्कार हासिल किए हैं। इन्होंने हर तरह की फिल्मों में हाथ आजमाया है। करीना कपूर बचपन से ही मीडिया में छाई रही, लेकिन अभिनय क्षेत्र में एंट्री 2000 में हुई। जी हाँ, रेफ्यूजी फिल्म के द्वारा करीना ने बॉलीवुड में एंट्री की। ये उनका पहला फिल्म है। अभिषेक बच्चन के साथ करीना की अदाकारी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया गया। शुरुआत में करीना कपूर को एक ही तरह के रोल करने पर आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। इसके साथ उन्होंने फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि इसका तोड़ निकालना होगा, और उन्होंने हटकर काम करना शुरू कर दिया। और इसके बाद 2004 में चमेली जैसी फिल्म में उन्होंने काम कर ये साबित कर दिया कि वे हर तरह की फिल्में कर सकती हैं। और भी बताऊंगी आपको बेबो यानी कि करीना कपूर के बारे में। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं रेफ्यूजी फिल्म के इस गीत का।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

श्रोता, आपको पता ही है कि इस गीत को हमने प्ले किया है आपके लिए रेफ्यूजी फिल्म से, और इसी फिल्म से करीना कपूर ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा। जैसे कि मैंने बताया ही है आपको कि करीना कपूर ने चमेली जैसी फिल्मों में काम कर ये साबित कर दिया कि वो हर तरह की फिल्में कर सकती हैं। आमिर के साथ उन्होंने फिल्म थ्री इडियट्स 2009 में किया और इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर आई फिल्म गोलमाल, इस फिल्म में भी करीना कपूर के रोल को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। एजेंट विनोद 2012 में करीना कपूर सैफ के साथ नजर आई, फिल्म कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर सकी। जल्द ही उनकी हीरोइन रिलीज होने को तैयार थी। सैफ अली खान के साथ उनकी दोस्ती करीना दोस्ती सुर्खियों में रही उस समय, और इसी तरह से दोस्तों करीना कपूर ने धीरे धीरे बॉलीवुड में अपने फिल्म अपने पैर इस तरह से जमा लिए कि लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। जी हाँ दोस्तों, करीना कपूर हमेशा टॉप की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का जिसे हमने लिया है फिल्म चमेली से।

आपने आनंद लिया इस गीत का सुनिधि चौहान की आवाज में और कार्यक्रम आज के कलाकार के दौरान हम बातें कर रहे हैं करीना कपूर के बारे में। चलिए दोस्तों अब बातें करते हैं थ्री इडियट्स के बारे में। फिल्म थ्री इडियट्स साल 2009 में रिलीज हुई थी जिसमें अभिनेता आमिर खान रेंचो के किरदार में और माधवन फरहान कुरैसी और शर्मन जोशी राजू रस्तोगी के किरदार में देखा गया। वहीं अभिनेत्री करीना कपूर को पिया के किरदार में फैंस ने काफी पसंद किया। थ्री इडियट्स में करीना कपूर के कैरेक्टर को काफी सराहना भी मिली। इतना ही नहीं आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी और केमिस्ट्री को भी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं इस गीत को कभी खुशी कभी गम फिल्म से, और आपको तो इस फिल्म यानी कि इस फिल्म के कैरेक्टर पू के बारे में तो पता ही होगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर का पू किरदार बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने फिल्म कभी खुशी कभी गम में ये रोल निभाया था जो लोगों को बहुत पसंद आया। लोग अक्सर पू के किरदार की नकल करते नजर आते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान करीना कपूर ने कहा था कि कुछ कैरेक्टर्स को टच नहीं करना चाहिए, वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही प्यार देना चाहिए। कोई भी पू का रोल नहीं कर सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। करीना कपूर से पूछा गया कि वो अपने किस कैरेक्टर के आउटफिट्स को ट्रेंड में लाना चाहती हैं, तो उन्होंने पू के रोल के बोले चूड़िया आउटफिट का नाम लिया था।
1: मिलने में हमको कितने बरसों लगे हैं यारा, ऐसी खुशी।
0: इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे कुछ और मजेदार गीत और एक और नए कलाकार के बारे में। फिलहाल चलिए दोस्तों, बताना चाहेंगे आपको कि आपसे थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायरेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद।

निशी दैनिक न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ श्रोता आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: श्रोता गजनी फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। लीजिए अब प्रस्तुत है स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत।
1: जिंदगी में दोस्ती के मायने कौन नहीं जानता। कहते हैं ना कि दोस्त एक चोर होता है जो आंखों से आंसू, चेहरे से परेशानी, दिल से मायूसी, जिंदगी से दर्द और बस चले तो हाथों की लकीरों से मौत तक चुरा ले। हालांकि अब दोस्ती के रिश्ते भी बिखरते जा रहे हैं, हर कोई अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में मसरूफ जो है। पर मेरे प्यारे श्रोता मित्रों, आपको बता दूं कि अगर आपको जिंदगी में एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी तो निकल पड़ी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz और कार्यक्रम है अपना गीत। और अपना गीत कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपके रेडियो साथी कईर अतर। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनाने जा रही हूँ दोस्ती के दीवाने की ऐसा गीत जिसे हम और आप सब ने बहुत बार सुने हैं और जब भी सुनते हैं मजा आ जाता है। माई डियर फ्रेंड, ये है गीत के बोल और सीधा बनर्जी की आवाज। जी हाँ, निशी गीत है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आएगा।

अभी आप सुन रहे थे लापांग दादा की आवाज में नुक्ते गीत। श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 MHz और कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना कार्यक्रम अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं तागिन गीत युकार दुई की आवाज में।

चांद और तारे आसमान में निकलकर रात के आगमन बता देते हैं। सूरज सुबह अपनी रोशनी से दिन के आगमन का संदेश देते हैं। पर मेरे प्रिय, आपका क्या संदेश है? क्यों आप इतने खामोश है? श्रोता, अपना गीत कार्यक्रम में लीजिए पेश है गालो गीत। ये विरह गीत है स्वर्गीय तोई कातो की आवाज में। छोटी सी उम्र से ही गाने में रुचि थी उनकी। हालांकि तोई कातो ज्यादा गीत नहीं गाए हैं, 2-3 ही गीत गाए हैं, पर वही 2-3 गीत आज भी हर किसी के रोंगटे खड़े कर देते हैं। वैसे आज आप हमारे बीच नहीं रहे, पर हमेशा हमारे दिलों में आपके गीत आपको जिंदा रखते हैं। तो आइए सुनते हैं तोई कातो की आवाज में ये गालो गीत।

श्रोता सुन रहे थे गामुआ जोहम की आवाज में वांचो गीत। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अपना गीत। अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक में आइए सुनते हैं अंतिम गीत तागे तायु की आवाज में आपतने गीत।

तो श्रोताओ, इसी अपतनी गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

अभी अभी आपने आनंद लिया स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत का। आइए इस बार लिए चलते हैं आपको कुछ पाश्चात्य संगीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashwani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए श्रोता, आगे बढ़ते हैं और इस बार आपको लिए चलते हैं पुराने मगर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत की ओर।

स्वागत करती हूँ श्रोता आप सभी का कार्यक्रम भूले बिश्रे गीत में। पहला गीत आपने सुना अनपर फिल्म से, जिसकी रिलीज हुई थी 1962 को, और इस गीत के गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर।

जुगनू फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वेल, बता दो आपको कि इस वक्त स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा के समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा पर प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48।

0: पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामा को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए सीधा आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन से योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आँख नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे ही आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए अपने आप को, थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है, और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और कमर का दर्द बढ़ जाता है, और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके बारे में जानना था। जो अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा रहता है
0: जी,
3: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताएं। नमस्कार जी।
0: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताएं।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
0: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहां तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा गले में भी लाभ होगा, जैसे मौसम के बदलते हुए उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका।
4: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार
4: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा।
1: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो प्रश्न है उसमें ज्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी जरूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज्यादा पीते रहते हैं, कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
0: जी,
1: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है, तो आप इसको करें आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां।
2: हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
0: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है, और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सव आसन है। कहने में तो बड़े हंसी की बात आ जाती है
0: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सव आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सव आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
0: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका।
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
0: जी,
5: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है
0: जी।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
0: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं, तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
0: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
0: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए।
1: सवेरे सबसे पहले कार्य करना चाहिए 1 ग्लास या 2 ग्लास या 3 ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है, बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है, और रात में ब्रश करके सोना है
0: जी,
1: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जनरली हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
0: वो
1: उसको हम वेस्ट कर देते हैं, तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो 2-3 आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ, हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है इसके अंदर, घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
0: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे
6: जी। धन्यवाद। मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या किसको कम दिखाई देता है, तो मैं विशेष से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
2: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है, और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुंह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुंह में पानी भर के आंखों में छपके मारना, और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आंखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आंखों को घुमाना, वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है।
0: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
2: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना, नहीं पानी पीने से पहले जी। तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
0: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
7: हेलो, नमस्कार, मैं मुकेश जी।
0: जी नमस्कार,
7: दोनों नमस्कार है
0: जी। सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
2: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
0: जी।
2: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
0: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
8: मुकेश कुमार जी,
0: जी क्या सवाल है आपका?
8: कुमार जी नमस्ते।
0: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
8: दीजिए और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
2: नमस्कार नमस्कार।
8: मेरा पहला सवाल यह है कि हीट बहुत ज्यादा है
0: जी,
8: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
0: जी
9: जी,
8: और योगा करने से वो ये होगा
1: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें, पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीजों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीजों का आप यूज कर सकते हैं, पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफी लाभदायक है। और बैठ करके कटी सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
0: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है, क्या दोनों को करना आवश्यक है?
2: ये दोनों योग के ही अंग हैं
0: जी,
2: प्राणायाम और आसन
0: जी।
2: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है, जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता, योग में वो केवल आसन मानते हैं, तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
0: जी।
2: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
0: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
10: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर
0: जी, बताइए
10: सर। जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए। दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मैडम?
2: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, मैं रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि तो उसके लिए क्या है, आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें। उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
0: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
2: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर 2 घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
0: जी।
2: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में। जो कंप्यूटर पे बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। 2-3 तरह की अब तो आंखों की दवाइयां आ गई हैं। और जहां तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है तो थोड़ा, जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, 1 घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए। और आप सुबह प्रातः काल में यदि थोड़ा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
0: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
2: जी
0: रशीद
9: जी, पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे प्रधानमंत्री
0: आपको भी शुभकामनाएं। जी सवाल पूछिए।
9: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
1: धन्यवाद रशीद जी। बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा। और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो, शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें। अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी डालें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले ही बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं, काजल की तरह आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
0: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
2: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
0: जी,
2: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अपना जो ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को। यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
0: बिल्कुल करेंगे तो होगा। कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
1: देखिए डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं, ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
0: जी।
1: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
0: जी।
1: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग प्राणायाम जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना बहुत तेज करने लग जाते हैं, उसका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है।
11: जी जी जी।
1: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है
11: जी।
1: और खाना जो खाया वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं 5-10 मिनट, उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
11: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका?
12: सर हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती है क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
11: बहुत अच्छा सवाल,
2: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेट कर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भाती नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है
11: जी।
2: तो ये कुछ प्राणायाम है जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
1: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है, बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
11: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका?
13: नमस्कार।
11: नमस्कार,
13: धर्मवीर गांधी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार। एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। आप धन्यवाद,
11: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
2: घर घर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए, जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहां बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीजों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती है। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूंगी खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज का बहुत जरूरी है उन पर नियंत्रण करना।
11: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे जरूर लाभ होगा। और कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना जरूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा
11: जी,
1: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है। अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4-5 घंटे बाद करना चाहिए, दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता, बॉडी के अंदर

0: बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है, बॉडी एकदम रिफ्रेश रहती है, तो उस समय करेंगे ज्यादा लाभदायक रहेगा। इस तरह से करें ज्यादा लाभदायक रहेगा।
1: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमा शंकर वाजपेयी। रमा शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी।
2: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
1: जी।
2: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
1: जी
0: रमा शंकर जी नमस्कार, धन्यवाद आपने जो प्रश्न किया। ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आप जब दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत भाता है क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज्यादा लाभ देगा।
1: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या? या फिर या 10 दिन या एक महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था।
4: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी जरूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
4: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज्यादा कुछ कर सकते, और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं, और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
1: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
0: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है। ब्राह्मणी प्राणायाम के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपस में मिलें, और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं है तो उसकी याददाश्त पे असर होता है, तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारे योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsgtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इजरायली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इजराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपनी सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारी को बधाई दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। रेल मंत्री ने कहा कि पुनर्विकास कार्य के दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और रेल का संचालन भी प्रभावित न हो। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और काबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत। फ्रांस का एविया शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की है। समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। साथ ही दोनों नेताओं ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने पंचतत्र फोटो प्रदर्शनी का भ्रमण करने से पहले महल परिसर में ही एक विशेष योग प्रदर्शन देखा। राष्ट्रपति भवन के पास भारतीय प्रवासी समुदाय की बड़ी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस का एविया शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की आशा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैर स्टारमर, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लूला द सिल्वा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता भी शिखर सम्मेलन स्थल पर पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। एवियों पहुंचने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री G7 देशों, साझेदार देशों और विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडैरिटी विषय पर आयोजित कार्य सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित गाला डिनर में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विश्व दर्पण के लिए फ्रांस के एवियों से अंकित कुमार।
0: अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गाजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। इसराइल की मीडिया ने बताया कि यरूशलम ने अंतर्राष्ट्रीय वापसी की समय सीमा का पालन करने से इनकार करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर सूचित कर दिया है। ब्रिटेन सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जोखिम वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री कैर स्टारमर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया है। सरकार ने कहा है कि वह सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी अवरुद्ध करेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइट सहित ऑनलाइन सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और काबो वर्डे आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। अन्य मुकाबलों में स्वीडन और ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत। फ्रांस का एविया शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसराइल ने कहा अमेरिका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गाजा में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। और ब्रिटेन ने